एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं। लीजिए पेश है आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आस्था के स्वर कार्यक्रम आरंभ करते हैं समूह स्वर में इस देशभक्ति रचना से। यह रचना गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई है।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है स्वतंत्र कुमार ओझा के स्वर में ये भक्ति गीत। इसे लिखा है पंडित सुमित्रानंदन पंत ने।

आज के आस्था के स्वर कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं हम पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में इस भक्ति रचना से।

0: इस गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर अब यहीं संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे आस्था के स्वर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आलेख रचना वैद्य का है और सूत्र स्वर है उमेश कुलकर्णी का।
1: श्रीफल या जिसे हम दैनिक बोलचाल की भाषा में नारियल कहते हैं, प्रत्येक पूजा में अवश्य चढ़ाया जाता है। किसी को सम्मान स्वरूप श्रीफल भेंट दिया जाता है। हमारे देश में पूजा के प्रतीक स्वरूप विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वैदिक रीति रिवाज के अनुसार समस्त प्रतीकों के पीछे वैज्ञानिक आधार निहित है। सज्जन व्यक्ति नारियल के फल के समान होते हैं, जबकि दूसरे लोग बेर की तरह, जो सिर्फ बाहर से मनोहर दिखाई देते हैं। आज का ज़माना व्यक्ति पूजा को महत्व देता है और चरित्र पूजा को नहीं। नारियल हमें चरित्र पूजा की प्रेरणा देता है। बाह्य सौंदर्य के अभाव में लज्जित न होकर नारियल ने अपना आंतरिक सौंदर्य विकसित कर दिखाया है और इस प्रकार श्रीफल यह गौरव नाम प्राप्त किया। बाह्य सौंदर्य प्राप्त होना न होना मानव के हाथ की बात नहीं है, परंतु मानव यदि चाहे तो अपना आंतरिक सौंदर्य अपनी इच्छा तथा कर्मों से सुंदर बना सकता है। सुकरात, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला जैसे अनेक लोगों ने अपने विचार सौंदर्य, गुण सौंदर्य या जीवन सौंदर्य से अपनी बाह्य कुरूपता को भुला दिया। आंतरिक सौंदर्य के सामने बाह्य सुंदरता गौण हो जाती है। बस मानव के पास आंतरिक सौंदर्य को देखने के लिए आँखें होनी चाहिए। महर्षि अष्टावक्र एक बार राजा जनक के दरबार में गए। उनकी देह की वक्रता को निहार कर राज्यसभा के पंडित हंसने लगे। प्रत्युत्तर में अष्टावक्र भी हंस दिए। राजा जनक ने पंडितों से हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस ऋषि के आठों वक्र अंगों को देखकर हंसे। फिर राजा ने अष्टावक्र से हास्य का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, जनक, जैसे राजश्री की सभा में विद्वानों की अपेक्षा मूर्खों को बैठे देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। विद्वानों के पास आंतरिक सौंदर्य को देखने के लिए आँखें होती है जो इनके पास नहीं है। इनका ध्यान केवल मेरी बाहर की कुरूपता पर ही जा रहा है। नारियल हमें उत्कृष्ट मनोवैभव का दर्शन कराता है। यहाँ वैभव यानी श्री इस दृष्टि से श्रीफल कहलाया। नारियल यानी कुरूपता, सुंदरता, कठोरता एवं मृदुता, इसका समन्वय है। जीवन में आने वाले अनेक द्वंद्वों को जो योग्य समन्वय साध सके वही महान बन सकता है और उसे ही जीवन में सच्ची श्री प्राप्त होती है। यूँ तो नारियल वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है और आर्थिक दृष्टि से लाभ देने वाला है, अतः इसे श्रीफल कहना सहज एवं स्वाभाविक है। नारियल सागर के सलोने पर को अपने उर में संग्रहित करके

0: लोगों को मधुर जल देने वाला होता है। श्रीफल हमें संदेश देता है कि विश्व का खारापन अपने पेट में संग्रहित करना, परंतु लोगों को मधुर जल देना, स्वधर्म पालन में कवच की तरह कठोर और अंदर मक्खन सी मधुरता रखने का अनमोल जीवन मंत्र श्रीफल हमें देता है। नारियल को मंदिर में देवी या देवता के सामने चढ़ाने के पीछे बलिदान का भाव है। मनुष्य और पशु का बलिदान देने वाले प्राचीन मानव को हमारे ऋषियों ने समझाने का अथक परिश्रम किया। विश्वामित्र ऋषि द्वारा निर्मित प्रति सृष्टि के नर अर्थात नारियल का बलिदान देने का सूचन स्वयं विश्वामित्र ने किया। श्रीफल में भी सिर, चोटी, नाक, दो आँखें सभी होते हैं। मंदिर में नारियल चढ़ाकर ऊपर का आधा भाग मंदिर में रखकर शेष नीचे का आधा भाग प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। फिर मूर्ति को सिंदूर लगाना और नारियल के पानी के छींटे डालना, इससे ऋषियों ने मानव को नर हत्या या पशु हत्या की कुरीति से बचाया है। हिंसा से अहिंसा की ओर हम आगे बढ़ते हैं और इस निमित्त श्रीफल ने अपना बलिदान दिया। इस तरह से सांस्कृतिक प्रगति में श्रीफल आदि मानव और सुसंस्कृत मानव के बीच में सेतु के समान है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख रचना वैद्य का था और सूत्र स्वर था उमेश कुलकर्णी का।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आप हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी के खंडवा केंद्र के साथ। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कांड में आज का प्रसंग।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर था सुरेश वाडकर का। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब सुनिए कृषि चर्चा। आज चर्चा का विषय है मोरिंगा, सहजन की खेती और स्वास्थ्य लाभ। सूत्र स्वर है माधुरी सेन का।
1: भाई बहनोनी राम राम। हमारी आज की कृषि चर्चा को विषय छे मोरिंगा सहजन की खेती न स्वास्थ्य लाभ। न वाचक स्वर छे माधुरी सेन को। मोरिंगा जेख सहजन, सुजना, सेनजन न मुनगा आदि नाम से भी जानियो जाए। ये एक चमत्कारी पेड़ छे जी कई स्वास्थ्य लाभ से भरपूर छे। एक ड्रमस्टिक ट्री भी कहो जाए। बात कराए की लाभ की तो सहजन में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम न अन्य पोषक तत्व पाया जाए जी शरीर ख स्वस्थ रखना में मदद करज। एम एंटी ऑक्सीडेंट हो जी शरीर ख फ्री रेडिकल सी होने वाला नुकसान से भी बचावज न रोग प्रतिरोधक क्षमता ख मजबूत करज। सहजन का नियमित सेवन ब्लड शुगर लेवल ख नियंत्रित करना में मदद करज। ई पाचन तंत्र ख मजबूत करज न कब्ज जैसी समस्या न से भी राहत दिलाई सकज। सहजन में ऐसा गुण हो जी त्वचा न बाल नख स्वस्थ रखने में भी मदद करज। बात करा सहजन का विभिन्न भाग का उपयोग की तो सहजन की पत्ती सब्जी, सूप, जूस न पाउडर का रूप में खाई जाई सकज। सहजन की फली सब्जी का रूप में खाई जाए। सहजन का बीज से निकलने वाला तेल बाल न त्वचा का लेन फायदेमंद रहे। सहजन औषधीय गुण न से भरपूर हो। एम 300 से अधिक रोग का रोकथाम का गुण हो। न 90 तरह का मल्टी विटामिन्स, न 45 तरह का एंटीऑक्सीडेंट गुण, 35 तरह का दर्द निवारक गुण, न 17 तरह का एमिनो एसिड एवं मिलच। मोरिंगा सहजन की खेती करना कलेन बीज बोणु या पौधा लगाना को तरीको अपनायो जाई सकच। मोरिंगा की खेती कलेन जरूरी खाद न उर्वरक डालना का साथ साथ पौधा का हाइड्रेट रखनु भी जरूरी रहे। मोरिंगा की खेती करना को तरीको मोरिंगा का बीज बोना को सबसे अच्छो समय मार्च, मई या जुलाई, अक्टूबर होए। बात करा सहजन की खेती का लेन महत्वपूर्ण चीज न की तो काली लेटराइट बलुई न बलुई दोमट मिट्टी सहजन की खेती का लेना अच्छी मानी।

0: जाएज। सहजन का बीज या पौधा लगाई ख एक लगायो जाई सकज। 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर गड्ढा बनाई का सहजन का पौधा लगाया जाएज। रोपण का समय 500 ग्राम सड़ी गोबर की खाद न 250 ग्राम नीम खली प्रति पौधा डालनू चाहिए। सहजन ख ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, पर एक नियमित रूप से पानी देता रहवा। सहजन ख शाखा न पत्ती पर कीड़ा लगने की समस्या हुई सकज, एकल इन समय समय पर पौधा की देखभाल करनू चाहिए। सहजन का पत्ता ख रोपना का लेना 6 से 8 सप्ताह बाद काटो जाई सकज। बात करा खेती का तरीका की, तो खेत का साफ कराना खरपतवार हटाई देवा। 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर का आकार का गड्ढा बनावा। गड्ढा में सड़ी गोबर की खाद न नीम की खली मिलावा। बीज या पौधा गड्ढा में रोपा। पौधा का नियमित रूप से पानी देवा, न पौधा नख कीट न रोग से बचावा। सहजन की खेती कम लागत में करी जा सकज, न सहजन का पत्ता फल न बीज को उपयोग विभिन्न प्रकार से कियो जा सकज। सहजन की खेती से आय को एक अच्छो स्रोत बनायो जा सकज। साथ सहजन एक पौष्टिक पौधो छे, न एका कई औषधीय गुण भी होयज। सहजन की खेती एक लाभदायक न फायदेमंद व्यवसाय छे। एक ही खेती से आप अच्छो मुनाफो भी कमाई सकोज, साथ पौष्टिक भोजन भी आप प्राप्त करी सकोज। न भाई बहनोनी, आज की कृषि चर्चा में बस एतरोज। राम राम।
1: ये थी आज की कृषि चर्चा। चर्चा का विषय था मोरिंगा, सहजन की खेती और स्वास्थ्य लाभ। स्वर था माधुरी सेन का।

0: सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आज सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर उनके स्मरणार्थ वार्ता। वार्ताकार होंगी मनप्रीत जायसवाल। सुबह 7:20 पर साप्ताहिक क्रम सुनहरे पत्र, जिसमें आज आप के सराहना, सुझाव और शिकायतों पर प्रतिक्रिया देंगे कार्यक्रम प्रमुख चिन्मय दीक्षित। और सुबह 8:15 सुनिएगा सुगम संगीत, जिसमें आज कलाकार होंगे आशा भोसले और अदनान सामी।

सुबह 8:30 पर सुनिएगा स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे और जिले की चिट्ठी का आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारण किया जाएगा सुबह 10 बजे।

सुबह 10:05 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और सुबह 10:40 पर हम प्रसारित करेंगे निमाड़ी लोकगीत, जिसमें आज कलाकार होंगे लखनलाल हिरवे और साथी।

दिन में 11 बजे से 11:15 तक हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे और इसके ठीक बाद 11:15 पर बैतूल के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संबोधन का सीधा प्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। इस महत्वपूर्ण प्रसारण के पश्चात हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

0: श्रोताओं, शाम 5:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। नियमित कार्यक्रम युववाणी में आज का क्रम होगा इंद्रधनुष। कार्यक्रम का प्रसारण समय शाम 6:00। शाम 6:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का, और शाम 7:21 पर किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित करेंगे, जिसमें आज की बात होगी एकीकृत बागवानी मिशन पर। साथ ही सुनिएगा जलवायु परिवर्तन और कृषि पर प्रभाव, इस विषय पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर चंद्रहास पंडित। श्रोताओं, रात्रि 8:00 से 8:35 के बीच सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NST आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जाता है, जिसका 18वां भाग विरासत हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रसारण समय पुनः एक बार सुन ले, रात्रि 8:00 से 8:35 के बीच, और इसके बाद विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना सुनिएगा। आपके पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने के समय में परिवर्तन हुआ है। अब ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर शनिवार शाम 5:30 से शाम 6:00 के बीच। लेकिन हाँ, इसके लिए रिकॉर्डिंग हम अपने नियमित समय यानी गुरुवार को सुबह 11:00 से 11:30 के बीच करेंगे। तो अब सुनिएगा फोन करें गीत सुने कार्यक्रम हर शनिवार शाम 5:30 से 6:00 के बीच। कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

आज की ताज़ा खबरों में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गुरुवार ओंकारेश्वर आएंगी, यानी आज ओंकारेश्वर आएंगी। वह नगर में दो दिन तक रहेंगी। सुरक्षित आवागमन और यातायात के दबाव को कम करने के लिए इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सभी तरह के भारी मालवाहक वाहनों का डायवर्जन किया गया है। अगली खबर है, चांद दिखने के साथ ही मुस्लिम समाज में सब्र और शहादत के प्रतीक मोहर्रम माह की बुधवार से शुरुआत हो गई। इसके साथ ही इस्लामिक कैलेंडर के नए साल हिजरी सन 1448 की शुरुआत भी हुई। जिला पंचायत खंडवा के पुराने सभाकक्ष का 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से पूर्ण नवीनीकरण कर इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। सभागार की बैठक क्षमता बढ़ाकर लगभग 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण आयोजनों के संचालन के लिए प्रोजेक्टर, कंप्यूटर प्रणाली, ध्वनि प्रणाली और आधुनिक मंच

व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। अगली खबर है, सिंध के अंतिम हिंदू शासक और राष्ट्र रक्षक सिंधुपति सम्राट दाहिर सेन के 1314वें बलिदान दिवस के अवसर पर भारतीय सिंधु सभा की खंडवा इकाई ने चित्रकला और रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों और युवाओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। अब खेल से जुड़ी खबर, महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर नीदरलैंड को 95 रनों से हराया। यह T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। अब जानकारी मौसम से जुड़ी हुई, कल दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। ये थी आज की ताज़ा खबरें, जिनका संकलन किया प्रज्ञा सोनी ने।

0: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है विशेष कार्यक्रम में। गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर वार्ता। वार्ताकार हैं मनप्रीत जायसवाल।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। 16वीं शताब्दी का भारत, राज्य बदल रहे हैं, सत्ता बदल रही है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इतिहास नहीं बदलती, वे इंसानों के भीतर का संसार बदल देती हैं। ऐसी ही एक दिव्यात्मा का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1563। स्थान गोविंदवाल। पिता का नाम गुरु रामदास जी, माता का नाम माता भानी। वे 5वें सिख गुरु बनने वाले थे। इनका नाम है गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही उनमें अलग गंभीरता थी। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते तो उनका मन कीर्तन, सत्संग और सेवा में लगता। उनकी माता भानी जी उन्हें छोटी उम्र से ही गुरु घर की मर्यादा और विनम्रता सिखाती थी। एक बात अक्सर कही जाती है, वे बहुत कम बोलते थे, महसूस ज़्यादा करते थे। 1574 में उनके पिता गुरु रामदास जी ने एक नए नगर का विकास शुरू किया। नगर का नाम है अमृतसर। उस समय इसका नाम रामदासपुर था। गुरु अर्जन देव जी भी इस सेवा में जुड़े। वे केवल धर्म गुरु के पुत्र नहीं थे, वे मिट्टी उठाने वाले सेवक भी बने। उन्होंने संगत के साथ एक एक ईंट साथ में उठाई और उस निर्माण में सहायक बने। अब बात करते हैं उनके गुरु बनने की घड़ी। 1 सितंबर 1581 गुरु रामदास ने गुरु अर्जन देव जी को 5वां गुरु घोषित किया। उस समय उनकी आयु लगभग 18 वर्ष थी, लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था। परिवार के भीतर भी विरोध हुआ, फिर भी गुरु अर्जन देव जी ने किसी के प्रति कटुता नहीं रखी। उन्होंने कहा, जो प्रभु की रजा है वही सर्वोत्तम है। बात करते हैं उनके निर्माण युग का, जहाँ उन्होंने शब्द, सेवा और अनेक सामाजिक कार्य किए। 1581 से लेकर 1604 तक। गुरु बनने के बाद उन्होंने केवल प्रवचन नहीं दिए, उन्होंने समाज बनाया, उन्होंने तालाब बनवाए, उन्होंने कई यात्राएं की, उन्होंने लोगों को जोड़ा, सत्य से जोड़ा, समाज से जोड़ा, धर्म से जोड़ा। गुरु जी की यात्राओं के बारे में जानते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में कई यात्राएं की। उन्होंने गाँव में जाकर लोगों से कहा, धर्म डर नहीं है, संबंध है। यह वाक्य साधारण था, लेकिन मन की गहराइयों में उतरने वाला था। उनकी यात्राएं विशेष रूप से लाहौर, तरन तारण, करतारपुर, गोविंदवाल और अमृतसर।

सी जगहों पर रहीं। इन यात्राओं में वे केवल उपदेश नहीं देते थे, वे लोगों के घर बैठते, भोजन करते, उन्हें सुनते, उनके सुख दुख सबको साझा करते थे। बात करते हैं तरन तारण की स्थापना। तरन तारण एक विशेष सेवा और आस्था और संगत का बड़ा केंद्र बना। इसका निर्माण 1590 में किया गया। गुरुजी ने एक ऐसे ग्रंथ की स्थापना भी की जिसमें सिख गुरुओं के अलावा अन्य और गुरुओं की वाणी भी सम्मिलित थी। ग्रंथ का नाम है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का संकलन 1603 से लेकर 1604 के बीच में किया गया। गुरु अर्जन देव जी ने महसूस किया समय के साथ वाणी बदल सकती है, इसलिए उन्होंने गुरुओं और संतों की वाणी एकत्र की। इस महान कार्य में उनका सहयोग किया भाई गुरदास जी महाराज ने। 1 सितंबर 1604 इसे हरमंदिर साहिब में स्थापित किया। पहले ग्रंथी बने बाबा बुड्ढा साहिब जी। गुरु बनने के बाद जो सबसे पहला परिवर्तन समाज में लेकर वो आए, संगत को जोड़ो सत्ता नहीं। जब 1 सितंबर 1581 में गुरु अर्जन देव जी गुरु बने, तब सिख समुदाय बढ़ रहा था। लोग दूर दूर से गुरु महाराज से मिलने आते थे, लेकिन गुरु जी ने कोई राजगद्दी नहीं बनाई। उन्होंने कहा, गुरु का घर सबका घर है। उस समय उन्होंने लंगर व्यवस्था और संगत को और व्यवस्थित किया। एक ऐसी सोच जिसने समय बदल दिया और समानता का विकास किया। उस दौर में जाति ऊंच नीच बहुत गहरी थी। गुरु अर्जन देव जी ने नियम रखा, पहले लंगर फिर दर्शन। राजा हो या साधारण व्यक्ति, सब एक पंक्ति में बैठकर भोजन करें। यह केवल भोजन नहीं था, यह समाज की दीवारें तोड़ने का तरीका था। गुरु जी ने एक ग्रंथ की रचना और करी जिसका नाम है सुखमनी साहिब। यह ग्रंथ मन को शांति देने वाला, यह ग्रंथ अपार परेशानियों से सुख देने वाला। इसकी वाणी में इतनी मधुरता और इतनी शालीनता थी कि जो पढ़े जो सुने वह इस वाणी में रम जाए। करीब 1602 के आसपास गुरु अर्जन देव जी ने इसकी रचना की। आपको एक विशेष बात बताना चाहती हूँ। आदि ग्रंथ तैयार करते समय गुरुजी ने देखा कई लोग गुरुओं की वाणी बदलकर बोलने लगे हैं। उन्होंने निर्णय लिया अब मूल वाणी को सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने केवल सिख गुरुओं की वाणी नहीं रखी, उन्होंने विभिन्न संतों की वाणी भी शामिल की, जैसे कबीरदास जी, रविदास जी, नामदेव जी, शेख फरीद जी। संदेश साफ था, सत्य किसी एक समुदाय की संपत्ति नहीं है। अब बात करते हैं गुरु अर्जन देव जी के परिवार के बारे में। गुरु अर्जन देव जी की पत्नी का नाम माता गंगा और पुत्र का नाम गुरु हरगोबिंद जी था। गुरु अर्जन देव जी उन्हें केवल ज्ञान नहीं जिम्मेदारी भी सिखाते थे। उन्हें हर छोटी और बड़ी बात बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करवाते थे ताकि वे आगे चल समाज को इसी दिशा की ओर अग्रसर कर सके। तो आइए हम उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसे सुनते समय सिख इतिहास में सबसे अधिक विनम्रता श्रद्धा और भाव अनुभव किए जाते हैं। गुरु महाराज के अंतिम दिन, उनकी शहीदी के दिन, गर्मी का समय था, स्थान लाहौर, लोगों के मन में बेचैनी और उस बीच एक व्यक्ति जो बाहर से शांत और भीतर से पूरी तरह प्रभु में स्थित था। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ जो गुरु जी को बंदी बनाया गया, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी 1606 ईस्वी में हुई थी और उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था। इतिहास के अनुसार गुरु जी को लाहौर बुलाया गया था। इसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं। जहांगीर को लगता था कि गुरु जी का प्रभाव और अनुयायी बहुत बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि जहांगीर को यह भी आपत्ति थी कि गुरुजी ने उसके बेटे खुसरो मिर्जा को आशीर्वाद दिया था जब वो विद्रोह करके जा रहा था। कुछ ऐतिहासिक वर्णनों में यह भी आता है कि गुरुजी पर जुर्माना लगाया गया और उनसे कुछ धार्मिक सिद्धांत बदलने के लिए भी कहा गया। कल्पना कीजिए, एक तरफ उस समय की सबसे बड़ी सल्तनत की ताकत और दूसरी तरफ एक संत जो न तलवार लेकर खड़ा है न सेना लेकर, सिर्फ सत्य सेवा और ईश्वर के नाम के सहारे, वे संत गुरु अर्जन देव जी। जब गुरु जी का प्रभाव बढ़ने लगा, जब हर धर्म और हर वर्ग के लोग उनके पास आने लगे, तब सत्ता को लगा कि यह केवल आध्यात्मिक नहीं बहुत बड़ी सामाजिक शक्ति बन रही है। इतिहास और सिख परंपरा के अनुसार गुरु जी पर दबाव डाला गया, उनसे कहा गया झुक जाओ, अपने प्रभाव को कम करो, जो कहा जा रहा है उसे मान लो। उनसे धर्म परिवर्तन, अपने आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ने जैसा दबाव भी जुड़ा हुआ था। लेकिन उस पल गुरुजी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया, धर्म केवल नाम नहीं होता।

0: कर्म वह होता है जिसे इंसान कठिन समय में भी नहीं छोड़ता। फिर समय आया, गुरु जी को कैद किया गया। सिख परंपरा के अनुसार उन्हें तपती हुई तवी पर बैठाया गया। उनके शरीर पर गर्म रेत डाली गई। सोचो, जिस शरीर पर गर्म रेत गिर रही थी उस मन में फिर भी शिकायत नहीं थी। और उसी समय गुरु जी के मुख से निकले, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु, तेरी इच्छा मेरे लिए मीठी है। यह शब्द केवल सहन करने के नहीं थे, यह विश्वास के थे। यह शब्द उस आत्मा के थे जो दर्द से बड़ी हो चुकी थी। गुरु अर्जन देव जी ने यह कभी नहीं कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ। उन्होंने पूरी मानवता को सिखाया, अगर सत्य बचाने के लिए कष्ट सहना पड़े तो सत्य मत छोड़ो। उनकी शहादत किसी एक समुदाय की कहानी नहीं बनी, वो एक संदेश बन गई। शरीर हार सकता है लेकिन सिद्धांत नहीं। अंतिम दिन सिख परंपरा में वर्णन मिलता है, गुरु अर्जन देव जी ने स्नान की इच्छा व्यक्त की। वे नदी की ओर बढ़े, संगत देख रही थी। किसी को नहीं पता था यह विदाई का क्षण है, इसके बाद हमें गुरु महाराज के दर्शन कभी नहीं होंगे। फिर गुरु जी उस मिलन में ही विलीन हो गए, जिसे सिख परंपरा में ज्योति ज्योत समाना कहा जाता है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने केवल विदा नहीं ली, एक दिशा छोड़ी। उन्होंने आगे गुरु पद सौंपा गुरु हरगोबिंद जी को, और आने वाले समय की तैयारी का संकेत दिया। उस शहादत की सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने किसी से घृणा नहीं सिखाई। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि दर्द नहीं होगा। उन्होंने यह दिखाया, दर्द के बीच भी मन प्रभु में स्थिर रह सकता है। आज भी जब कोई सुखमनी साहब का पाठ पढ़ता है या हरमंदिर साहब में माथा टेकता है, तो कहीं ना कहीं उस शांति की छाया महसूस की जाती है जो गुरु अर्जन देव जी छोड़ गए थे। आज हमारा कर्तव्य इस शहीदी दिवस पर उनकी प्रत्येक बातों पर ध्यान देना है जो गुरु महाराज जी कहे गए। अपने धर्म के लिए खड़े रहो, सत्य के लिए खड़े रहो, किसी भी गलत बात के आगे मत झुको, और हमेशा समानता का व्यवहार सबके साथ रखो। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।
1: गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे उनके स्मरणार्थ वार्ता। वार्ताकार थी मनप्रीत जायसवाल। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कुछ ही देर बाद।
2: पहुँचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को और महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश में 5 दिवसीय दौरा कर रही हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उनका इंदौर विमानतल पर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात वे बैतूल जाएंगी। वहां वे ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के बाद वे ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। 19 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी और 21 जून वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। 22 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूती मिलने की

0: उम्मीद है। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस साल 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य, पराक्रम, त्याग का प्रतीक है। उनका नाम स्मरण करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। महाराणा प्रताप ने तमाम कठिनाइयों के बीच भी राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखा। समाज का हर वर्ग, देश की अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए महाराणा प्रताप को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर, युवा खिलाड़ियों और समाज सेवियों को मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब बढ़ने की बात आएगी तो हमारे लिए भौतिक अधोसंरचनाएं जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के लिए, लेकिन गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे कामों के सिलसिले में हमने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी होगी तो पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अपने उस अवकाश को भी निभा रहा है, लेकिन अवकाश के साथ साथ उनके जीवन के सभी पक्षों को आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए भी हम पाठ्यक्रम में भी महाराणा प्रताप को जोड़ने वाले हैं, ताकि स्कूल एजुकेशन के माध्यम से उनके जीवन के सभी पक्षों से भविष्य की पीढ़ी को भी सीखने को मिले।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल उज्जैन जिले के नागदा में बालाजी धाम में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा व ध्वज पूजा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव का श्री बालाजी धाम में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत विशेष रूप से उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UN वुमेन द्वारा संचालित सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेसेस फॉर वुमेन परियोजना में जबलपुर शहर को शामिल किया गया है। जबलपुर का चयन देश के एकमात्र शहर के रूप में किया गया है। विश्व के चुनिंदा 65 शहरों में संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जबलपुर में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सर्वसाधारण सार्वजनिक वातावरण विकसित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस उपलब्धि पर कल मानस भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए। इन सुझावों के आधार पर शहर के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी युवतियों के लिए सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। लीड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड को 209 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर सिमट गई।

अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में कल भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। आज अगले मुकाबले में भारत का सामना जर्मनी से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 जून को विकासखंड कोलारस के ग्राम पचावली और 20 जून को जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित मानस भवन में प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आज आगरमालवा स्थित नमो उपवन में वृक्षारोपण

को जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित मानस भवन में प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आज आगरमालवा स्थित नमो उपवन में वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम हटाने और अन्य त्रुटियों को सुधारने की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में आगामी 20 जून को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कटनी जिले में आयोजित जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। शिविर में अब तक 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12,156 का निराकरण किया जा चुका है। श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत छात्रों के लिए संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में रसोइयों के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को तो वहीं महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: सुनहरे पत्र के सभी श्रोताओं को पराग
1: और चिन्मय दीक्षित का
0: नमस्कार। दीक्षित जी, कार्यक्रम का आरंभ कर दें।
1: कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, पहले बता दें कि गर्मी से काफी राहत मिलने लगी है खंडवा को।
0: बिल्कुल,
1: देखिए आज ही शायद प्रदेश में हमारी राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो पधारने वाली हैं और उनके आते से ही मौसम भी अपनी करवट ले रहा है और अच्छा सुहाना होने लगा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दिख रहे हैं आपके हाथों में पत्र बहुत उतावले से, तो चलिए उनको पढ़ने का क्रम आरंभ करते हैं।
0: तो पत्रों से ही शुरुआत करते हैं।
1: पत्र से शुरुआत
0: बिल्कुल,
1: करते
0: बिल्कुल,
1: हैं
0: बिल्कुल। तो पहला पत्र है नफीसा लोखंडवाला का।
1: हाँ।
0: उन्होंने खंडवा से एक पत्र भेजा है और विस्तार पूर्वक उन्होंने 3 जून से 9 जून तक के कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
1: अच्छा।
0: 3 जून को प्रसारित युवावाणी कार्यक्रम संचित जी ने अपने मजाकिया अंदाज में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रस्तुत किया, इन्हें बहुत अच्छा लगा। 4 जून को दीक्षित जी और राखी जैन जी द्वारा प्रस्तुत किया गया सुनहरे पत्र कार्यक्रम बेहतरीन लगा। 8 जून को आरती शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम, जिसमें नर्मदा नदी पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई, साथ ही शैलू मंडलोई जी ने रक्तदान पर महत्वपूर्ण जानकारी दी, ऐसा इनका कहना है। 5 जून को सुनहरे पल कार्यक्रम में फिरदौस मंसूरी जी की प्रस्तुति इन्हें पसंद आई, ये कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रित था। 6 जून को विद्याधर मुड़े जी ने परिंदों पर केंद्रित शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, अच्छा लगा इन्हें, ऐसा कहती हैं। साथ ही मधुमेह विषय पर डॉक्टर प्रशांत डोंगरे जी से उनकी बातचीत बहुत अच्छी और जानकारीपूर्ण रही। इसी दिन विशेष कार्यक्रम में प्रफुल्ल मंडलोई जी द्वारा प्रस्तुत की गई वार्ता दूर होता जा रहा पुस्तकों का संसार, इन्हें बहुत पसंद आई। साथ ही 9 जून को विविधा कार्यक्रम में मधुर बचपन कविता सराहनीय रही। इसी दिन ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में योग और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर अनीशा से अंतिम

0: अम्बाला पटेल की बातचीत इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगी।
1: क्या बात है, धन्यवाद आपका नफीसा लोखंडवाला जी, आपने तो हमें हस्तलिखित पत्र भेजा, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम अपने सभी श्रोताओं से भी आग्रह करेंगे कि विभिन्न रंग बिरंगे कागजों पर या सफ़ेद कागजों पर स्याही से लिखे हुए आपके हाथ की जो वो हस्तलिखित विचार होते हैं वो हमें इतने ज़्यादा प्रिय लगते हैं कि हम क्या बताएं। बहरहाल ये शायद आज का एकमात्र पत्र था, अब ईमेल्स की ओर बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, और पहला ईमेल है KPS चौहान जी का
1: जी।
0: इन्होंने लिखा है कि आपके केंद्र से प्रसारित नियमित कार्यक्रम चिंतन, भक्ति संगीत, रामचरितमानस पाठ और आपके मीति गीत जैसे सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं। 4 जून का चिंतन बहुत अच्छा लगा, जिसमें प्रकृति से खिलवाड़ करने के दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया गया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
1: बहुत धन्यवाद आपका, हमें बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको चिंतन की प्रस्तुति पसंद आ रही है। ये वास्तव में एक समाज के रूप में बढ़ता हुआ कदम प्रतीत होता है।
0: बिल्कुल, और अगला ईमेल है पालदानागा इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना और मोहम्मद रफी मंसूरी का। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन से सलाम भेजा है। इन पंक्तियों के साथ इन्होंने शुरुआत की है, आगे लिखते हैं, खुशियां भरी हो जिंदगी आपकी, यही हमने पैगाम भेजा है। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपके इस प्रोग्राम में हम बहुत दिनों बाद शामिल हो रहे हैं, तकरीबन कोरोना के बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं और अब फिर से जुड़ने का समय मिल रहा है, जिसकी हमें बहुत खुशी है। आपके यहाँ से दिनांक 14 जून को आपकी मीति गीत कार्यक्रम पसंद की प्रसारित हुआ, ये पसंद किया इन्होंने, आरती जी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही इसी दिन शाम को युववाणी में रक्तदान दिवस पर गुरप्रीत जी से जो बातचीत सुनी बहुत अच्छी और प्रेरणादायक लगी। हेलो फ्रेंड्स भी सुना, श्रोताओं से की गई बातचीत भी अच्छी रही और इसके लिए उन्होंने पूरी टीम को दिल से शुक्रिया कहा है।
1: बहुत धन्यवाद आपका हमसे पुनः जुड़ने के लिए, इसके लिए तो हम बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो गए हैं कि ऐसे हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं जो कोरोना के बाद से शायद पत्रोत्तर में शामिल नहीं हुए थे।
0: बिल्कुल सही,
1: तो आगे भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिएगा, और भी कई अन्य कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें श्रोताओं का सीधा सीधा साथ होता है, तो आशा करते हैं आप उनसे भी जरूर जुड़ेंगे
0: जी। अगला ईमेल ले लें
1: जी।
0: सुनहरे पत्र प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा पुरखलूस आदाब।
1: आदाब।
0: इधर कुछ दिनों से ज्यादा बिजी होने के कारण आपसे आपके नए प्रोग्राम से नहीं क्रम नहीं सुन पाए हैं, इसलिए पुराने क्रम के बारे में लिख रहा हूं, उम्मीद है अन्यथा न लेते हुए प्रोग्राम में जरूर पढ़े जाएंगे।
1: बताएं।
0: 22 मई 2026 का आपके मीते गीत कार्यक्रम सुनकर दिल में खुशी हुई, साथ ही नीलम त्रिपाठी जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। यही प्रोग्राम जिसे मुरे जी ने पेश किया पसंद आया, मुरे जी को भी बधाई। 16 जून को श्वेता सोनी द्वारा प्रस्तुत आपकी मीते गीत कार्यक्रम अच्छा लगा, श्वेता जी को बधाई। 13 मई को प्रसारित एक ही फिल्म से कार्यक्रम में मेरे महबूब की प्रस्तुति भी लाजवाब लगी, नाजमा जी को धन्यवाद देते हैं। सुगम संगीत में चंदन दास को सुनकर दिल खुश हो गया, फिर से एक बार बधाई दे रहे हैं। साथ ही विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर योगेश शर्मा की वार्ता तेज गर्मी में बचाव के उपाय और सीमा कराही की वार्ता टमाटर की खेती के तरीके बेहद कर्णप्रिय और जानकारीपूर्ण रही, इसके लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है।
1: धन्यवाद आपका, पत्र लिखने का क्रम आपने अनवरत बनाए रखा उसके लिए। बहरहाल आप जो है हमें कई बार यदि आप सुन ना पाए तो ये भी बता सकते हैं कि आपकी अपेक्षाएं क्या रहती हैं, हम उन्हें भी शामिल करना बहुत अच्छे से पसंद करेंगे
0: जी। अगला मेल है शनिवार, माफ कीजिए शायद ये इन्होंने शुक्रवार लिखना चाहते हैं। शनिवार को सुबह राग असावरी पर आधारित राग रंग कार्यक्रम सुना, इस राग में निबद्ध कई प्यारे सुमधुर गीत सुनने को मिले। पूरा कार्यक्रम बहुत ही मेहनत, लगन और तैयारी से किया हुआ था, कोमल और शुद्ध स्वरों का प्रयोग कहाँ और कैसे हुआ जानने को मिला। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने तो आज हमारे प्रसोता का ही दिन बना दिया है, तो धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: ये पत्र लिखा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रित पंचोलिया।
1: अरे वाह, चलिए तो पंचोलिया परिवार को हम धन्यवाद प्रेषित करते हुए अगले ईमेल की ओर बढ़ते हैं।
0: अगला ईमेल है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और किट्टू का। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी खंडवा के सुबह की सभा में 5-5 मिनट वाले कार्यक्रम सभी अच्छे हैं। जैसे उमेश कुलकर्णी जी की आवाज में समय का चिंतन, उमा कराहे जी की कृषि चर्चा, शायद ये सीमा कराहे लिखना चाहते हो, सीमा कराहे जी की कृषि चर्चा में खरीफ फसल का उपयुक्त जानकारी, मनीष शर्मा जी की सुबह शाम तक कार्यक्रम विवरण की

0: संपूर्ण जानकारी विद्या सिंह जी द्वारा पेश आज की ताजा खबर, जिसे तृप्ति सोनी जी ने संकलित किया, इन्हें बहुत पसंद आया है। शाम की सभा में 7 बजे दिल्ली समाचार, दोपहर में प्रादेशिक समाचार 2:10 पर जो प्रसारित होते हैं, इन्हें अच्छे लगते हैं। ये सभी हमें बहुत बेहतर लगते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और ये अब आपकी मीत ये गीत कार्यक्रम को भी बहुत पसंद करते हैं, और इसमें पत्र क्यों शामिल नहीं हो रहा है, इस संबंध में उन्होंने अपनी
1: प्रश्न जिज्ञासा
0: व्यक्त की है।
1: बंधुवर, सबसे पहले तो पत्र लिखने के लिए आपका आभार। दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको केवल 5 मिनट वाले जो प्रसारण है वो सबसे ज्यादा कर्णप्रिय जान होते हैं। तीसरी बात, ये बहुत हैरानी की बात है कि कई बार हम अपने श्रोताओं को ये बता चुके हैं कि हमारे जो भी कार्यक्रम है जिनमें श्रोता शामिल होते हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी फिल्टर नहीं लगाया जाता है, रैंडमली सबको लिया जाता है। हाँ, वो कार्यक्रम जिनमें फ़ोन किया जाता है, जैसे फ़ोन करें गीत सुने, उसमें हम अपने श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक दिवस, हर उसकी आवृत्ति पर आप फ़ोन ना करें, अन्य श्रोताओं को भी मौका दें। इसके अतिरिक्त और कुछ भी ऐसा फिल्टर नहीं रहता जिसमें कि उन्हें बाहर रखा जाए, किसी भी प्रकार का कोई फिल्टर नहीं रहता, रैंडमली सबको मौका मिलता है। हाँ, ये है कि पुनरावृत्ति से बचने का प्रयत्न हम करते हैं।
0: जी, आपने फ़ोन करे गीत सुने कार्यक्रम की बात की, तो हमारे श्रोताओं को उनके उसके परिवर्तित समय के बारे में जानकारी
1: जरूर जरूर।
0: श्रोताओं, अब से फ़ोन करे गीत सुने कार्यक्रम में के प्रसारण समय में परिवर्तन हुआ है। ये कार्यक्रम अब शनिवार को शाम 5:30 से 6 बजे के बीच प्रसारित होगा, लेकिन हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग हम प्रत्येक गुरुवार को सुबह 11 बजे से 11:30 के बीच ही करेंगे। तो वापस लौटते हैं सुनहरे पत्रों पर, और ये पत्र है हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे लिखते हैं, ग्राम शिरटे, जिला सांगली, महाराष्ट्र से। शनिवार 6 जून को प्रसारित किया गया स्वास्थ्य विषयक प्रोग्राम चेतना उपयुक्त लगा। इसमें होम्योपैथी इस विषय पर जानकारी दी गई, लाभप्रद थी। विविध आजारों पर होम्योपैथी का इलाज लाभदायक कैसा होता है, इसकी उपयुक्त जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: क्या बात है, धन्यवाद आपको। होम्योपैथिक जो जानकारी आपके समक्ष रखी गई वो आपको अच्छी लगी, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। पत्र लिखने के लिए आभार।
0: जी, अगला पत्र है, आदाब से, अभिवादन से शुरुआत किया है, लिखने वाले श्रोता हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब मोइन, मोहम्मद हसनैन और उनके परिवार के सदस्य, साथ ही बाजार चौक ग्राम दीवाल के शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े ने भी इसी ईमेल के माध्यम से अपनी इच्छा, अपनी सलाह, अपनी सुझाव साझा किए हैं। लिखते हैं कि गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में चिन्मय दीक्षित जी और मनीष शर्मा जी ने जो प्रस्तुति दी, इन्हें बहुत अच्छी लगी। साथ ही गुरुवार को आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए मनीष शर्मा जी को भी इन्होंने बधाई दी है। शनिवार को सुबह सुनहरे पल और आपके मीते गीत कार्यक्रम लाजवाब लगा, यादगार पेशकश के लिए धन्यवाद। रविवार का फोन करे गीत सुने कार्यक्रम मनीष शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। सुगम संगीत कार्यक्रम में लकी अली और जगजीत सिंह के गीतों ने समा बांध दिया। लोक रंजनी कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। बुधवार का एक ही फिल्म से कार्यक्रम, फिरोज खान, हेमा मालिनी और रेखा अभिनीत फिल्म धर्मात्मा की कहानी और सुनहरे सुमधुर गीत सुनकर मन मयूर नाच उठा, ऐसा इन्होंने लिखा है। साथ ही इसी मेल में आपकी मीति गीत कार्यक्रम में सुरीले गीतों ने समा बांध दिया, इसके लिए भी इन्होंने अपनी धन्यवाद प्रेषित किया है।
1: धन्यवाद आपको, आपको लगभग समस्त कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां पसंद आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो इसको प्रस्तुत करने वाले साथी होते हैं, उद्घोषक बंधु होते हैं, वो आपके इन पत्रों को सुनकर बहुत खुश होंगे। सभी गंगराड़े परिवार को एवं पवार परिवार को इस पत्र के लिए धन्यवाद।
0: जी, कल्लनगंज से ही कौसर भी पवार, हसीना भी पवार, हीना सईद होकर और अलमाज बानो, साथ ही सबीना और जहीर पवार ने भी बिल्कुल ऐसा ही एक ईमेल भेजा है हमें, और इन्होंने भी धर्मात्मा फिल्म की कहानी और गीत जो सुनाए गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: आपको भी इस पत्र, इस ईमेल के लिए धन्यवाद। हम वैसे अपने सभी श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में श्रोताओं का शामिल होना जो है वो उनके लिए बहुत हर्ष का विषय होता है, तो यदि आप एक ही परिवार से ईमेल भेज रहे हैं तो एक ही ईमेल में अपना समस्त जो लब्बोलुबाब है वो हमें लिखकर जरूर भेजें, ताकि हम बार बार एक ही परिवार के श्रोताओं का नाम

0: की आवृत्ति से बचे।
1: बिल्कुल सही। और अब अगला मेल ले लें।
0: जी,
1: अगला मेल भेजने वाले हैं शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश मुहाल, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद रिजवान।
0: अच्छा,
1: लिखते हैं, गुरुवार का सुनहरे पत्र कार्यक्रम जिसमें श्रोताओं के ईमेल और पत्र शामिल किए गए बहुत अच्छा लगा। आपको और मनीष शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम की पेशकश लाजवाब और यादगार रही। मनीष शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म धर्मात्मा की कहानी और सुमधुर गीत सुनकर दिल झूम उठा। यादगार और दिलकश पेशकश के लिए पुनः एक बार प्रस्तुतकर्ता मनीष शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके मीते गीत कार्यक्रम भी इन्हें पसंद आया। साथ ही गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम भी पसंद आया। सुनहरे पल, सुगम संगीत, चेतना, सप्ताह भर के आपके मीते गीत कार्यक्रम, युववाणी, किसानवाणी, इन्हें लगभग सभी कार्यक्रम इन्हें पसंद आए, ऐसा इन्होंने अपने ईमेल के माध्यम से व्यक्त किया है।
0: धन्यवाद आपका। हमें अच्छा लगा कि आपको लगभग सभी कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। हम विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि इन कार्यक्रमों में कौन सी बात ऐसी रही जो आपके दिल को छू गई, उसका जिक्र अगर आप करें तो हमें और अच्छा लगेगा। पर आपका इस ईमेल के लिए आभार।
1: जी, एक और ईमेल शामिल कर लें। ये ईमेल है भिकनगांव से साफिया अरहान खोकर और अयान खोकर का।
0: हाँ,
1: इन्होंने भी गुड मॉर्निंग खंडवा, आपके मीते गीत कार्यक्रम और एक ही फिल्म से कार्यक्रम की तारीफ लिखकर भेजी है अपने ईमेल के माध्यम से।
0: आपका भी आभार इस पत्र, इस ईमेल के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे यहाँ की सभी प्रस्तुतियाँ पसंद आ रही होंगी। बहरहाल हमें ये लिखकर ज़रूर बताइए कि उनमें क्या क्या पसंद आ रहा है आपको, कौन सी बात है जो आपके दिल को छू गई, कौन सा ऐसा वक्तव्य था जिसने आपकी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया।
1: जी,
0: मेरे विचार से अब समय हो चला है आप सभी को एक अच्छे से नगमे की ओर ले चलने का।
1: सही। तो लव इन टोक्यो फिल्म का गाना एक है।
0: ज़रूर।

0: पुनः एक बार सुनहरे पत्र में ईमेल्स के साथ हाजिर हैं हम
1: जरूर।
0: और आरंभ करते हैं ग्राम जामली खला खंडवा से हमारे श्रोता हैं माणक चंद राठौर, पुष्पा बाई राठौर और ग्राम छिगांव देवी से अशोक वाघे और वंदना वाघे।
1: अच्छा।
0: जिन्होंने ईमेल किया है और लिखते हैं कि आपके द्वारा और मनीष शर्मा जी ने जो पिछली बार सुनहरे पत्र कार्यक्रम पेश किया इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत इन्हें पसंद आया है, धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद।
0: साथ ही मनीष शर्मा जी को एक ही फिल्म से कार्यक्रम फोन करेगी सुने कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं। इन्हें धर्मात्मा फिल्म की कहानी और गीत बहुत मस्त लगे ऐसा इनका कहना है और लाजवाब पेशकश के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
1: अरे वाह, धन्यवाद आपके इस पत्र के लिए और आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद क्योंकि आप जिस फिल्म का नाम ले रहे हैं उसका प्रसारण कल ही हुआ था तो आप इस पत्र को भेजने से पहले तक के समस्त कार्यक्रम सुन रहे हैं और उसे उसकी प्रतिक्रिया अपने पत्रों में शामिल करते हैं, इसके लिए हमारा जो केंद्र है वो आप सभी श्रोताओं का आभारी है।
0: बिल्कुल। अगला मेल है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल का। लिखते हैं कि 11 जून को मनीष शर्मा जी और अपने सुनहरे पत्र जो पेश किया उसे इन्हें बहुत अच्छा लगा, लाजवाब लगा ऐसा इनका कहना है। उसी दिन लता जी और साथियों से निमाड़ी लोकगीत प्रसारित हुए, पसंद आए। मनीष शर्मा जी ने आपकी पसंद कार्यक्रम पेश किया, बहुत अच्छा लगा और इसके लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है। साथी ने प्रशांत जी विद्या जी की भी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी आपकी मीति गीत कार्यक्रम की, पसंद कर किया इन्होंने इसके लिए धन्यवाद और शुक्रिया। कहते हैं 14 जून को जो सोम संगीत पेश हुआ कैलाश खेर की आवाज़ में उसके लिए भी इन्होंने अपना
1: क्या बात है, आपको लोक संगीत और सुगम संगीत की प्रस्तुतियां पसंद आ रही हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी हमें ऐसे ही पत्र लिखते रहिएगा
0: जी। चांदनी चौक गड़ी पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन ने अपना ईमेल भेजा है और बड़ा सा ईमेल है। उसमें लिखते हैं कि हम आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, जब से इसका प्रसारण मोबाइल पर शुरुआत हुआ है तब से, लेकिन सुनहरे पत्र कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पाए। इसी तरह 2 सप्ताह हम पत्र भेजने से वंचित रह गए लेकिन सुनहरे पत्र कार्यक्रम को हमने एक बार गौर से सुना। दिन गुरुवार को सुबह 11 जून 7:20 पर और इसी दिन इस कार्यक्रम में शिरकत हुए थे कार्यक्रम प्रमुख और मनीष शर्मा। अंदाज बहुत मनमोहक लगा, आवाज भी बहुत बेहतरीन रही, इसके लिए इन्होंने इस कार्यक्रम की तारीफ लिख कर भेजी है। साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम फोन करे गीत सुने कार्यक्रम को भी उन्हें सुनने का सौभाग्य मिला ऐसा इन्होंने कहा है। सुमधुर आवाज और इसका जादू बिखेरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या जी, श्वेता जी, प्रशांत मालवीय और सभी प्रस्तुतकर्ताओं को इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी जो हमारे उद्घोषक बंधु हैं या कंपेयर हैं इनको आपका इस पत्र को में जिक्र सुनकर अपने नाम का उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हमें बहुत खुशी हुई कि आप जो हैं भले ही कार्यक्रम में आपका पत्र शामिल नहीं हो सका हो पर आपने कार्यक्रम सुनना नहीं छोड़ा। तो चलिए देखिए आज आपका पत्र शामिल भी हो गया है और उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम भी आप सुन रहे होंगे।
0: बिल्कुल सही। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी ने अपना ईमेल भेजा है। लिखते हैं 11 जून 2025 को सुनहरे पत्र कार्यक्रम बेहद लाजवाब लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 12 जून को प्रसारित राग रंग कार्यक्रम जो राग असावरी पर केंद्रित था इसमें बहुत अच्छे गीत सुनाए इसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। 13 जून को लकी अली की आवाज में सुगम संगीत लाजवाब लगा ऐसा लिखते हैं। 14 जून को मनीष शर्मा जी का आपकी मीति गीत कार्यक्रम बहुत पसंद आया इन्हें ऐसा इन्होंने व्यक्त किया है। और 15 जून को निमाड़ी लोकगीत में प्रभाकर दुबे और साथियों के

0: गाए झालरिया लोकगीत इन्हें बहुत पसंद आए। इन्होंने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
1: क्या बात है, मैं वही सुनकर बहुत हर्षित हो गया कि आपको लोकगीतों में रुचि है और आपको लोकगीत की प्रस्तुति पसंद आई। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके इस ईमेल के लिए आपका आभार।
0: कहारवाड़ी मोहल्ला ग्राम जसवाड़ी के श्रोता हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु और उनके परिवार के सदस्य। लिखते हैं कि 17 जून बुधवार को कार्यक्रम आस्था के स्वर बहुत अच्छा लगा। इन दिनों कार्यक्रम आस्था के स्वर में एक से बढ़कर एक सुमधुर भजन सुनने को मिल रहे हैं। इसी दिन का एक ही फिल्म से, जिसमें और साथ ही साथ आपके मीतीय गीत कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा, प्रतिक्रिया देते हैं।
1: धन्यवाद आपका इस ईमेल के लिए। आशा है कि हमारी ऐसी प्रस्तुतियां जो आपको पसंद आ रही हैं उनके विषय में आप जरूर लिखेंगे कि आपको उसमें क्या क्या अच्छा लगा, कौन सी बात आपको आपके दिल को छू गई और कौन सी बात उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई।
0: बिल्कुल सही। तो अगला मेल शामिल कर लें
1: जी।
0: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा ने, साथ ही ग्राम खैगांव महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है ईमेल के माध्यम से। 17 जून दिन बुधवार का कार्यक्रम आपकी मीति गीत इन्हें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी खंडवा के सभी प्रस्तोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और निमाड़ी लोकगीत इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लिखते हैं।
1: क्या बात है, आपको श्रोताओं जिस कार्यक्रम में शामिल होते हैं वो कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है, ये जानकर हमें अच्छा लगा। निमाड़ी लोकगीत के आप रुचिकर श्रोता हैं ये जानकर और खुशी हुई। पत्र ईमेल लिखने के लिए आपका आभार।
0: एक और ईमेल है सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी के श्रोता सूरज कुमार ढाक से, ऋतुराज, साक्षी और पूर्णिमा पटेल का। इन्होंने भी बिल्कुल दो लाइन में अपना ईमेल खत्म किया है। 15 जून दिन सोमवार का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में विद्या सिंह चौहान की प्रस्तुति शानदार लगी, धन्यवाद।
1: क्या बात है, हमें भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था बतौर श्रोता, और पूरा यकीन है कि जो हमारी उद्घोषिका साथी हैं विद्या सिंह चौहान जी, उन्हें भी आपके इस पत्र को सुनकर आनंद आ गया होगा।
0: ये अगला ईमेल है प्रेषित करने वाली हैं चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: हाँ।
0: लिखती हैं कि चिन्मय जी और पंकज लाड जी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरे पत्र कार्यक्रम के लिए।
1: ये तो
0: काफी पुराना है ये
1: जी।
0: 14 मई को प्रसारित इस कार्यक्रम की पेशकश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही लिखते हैं कि 19 और 20 मई को प्रसारित आपकी मीति गीत कार्यक्रम लुभावना लगा। इस प्रस्तुति के लिए दीपमाला जी और विद्या जी को कोटि कोटि बधाई। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के तहत शोले फिल्म की कहानी और गीत इन्हें पसंद आए, धन्यवाद देते हैं। मनीष शर्मा जी को 17 जून का आपकी मीति गीत कार्यक्रम इन्हें इनके दिल को छू गया, ऐसा इनका कहना है और इनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्होंने प्रेषित की है।
1: आपके इस ईमेल के लिए आपका धन्यवाद और आशा करते हैं कि इस माह भी आपने कुछ प्रस्तुतियां सुनी होंगी, तो अगले पत्र में अगले सप्ताह उनको जरूर शामिल करिएगा।
0: केवल 17 जून की प्रस्तुति इन्हें पसंद आई में इन्होंने लिखा है।
1: अन्य कार्यक्रमों को भी सुनने का प्रयत्न करें और उसमें अपनी रुचियां अरुचियां जरूर बताएं।
0: बिल्कुल। और बिहार से मेल है वसीम अकरम, अजीम वकार और उनके परिजनों का। लिखते हैं 14 मई, ये भी पुराना है काफी, 14 मई 2026 का प्रोग्राम जिसमें चिन्मय जी और पंकज जी ने सुनहरे पत्र पेश किया, इसके लिए इन्हें कोटि कोटि बधाई। श्रोताओं द्वारा भेजे गए सभी पत्र और मेल शामिल किए गए, जो छूट जाएं उसे अगले सप्ताह जरूर शामिल कर लें, ऐसा इनका सुझाव है। इस सुझाव को अमल में जरूर लाएं, ऐसा भी इनका कहना है। 14 जून 16 और 17 जून को प्रसारित आपकी मीति गीत कार्यक्रम लुभावना लगा। इस प्रस्तुति के लिए आरती श्वेता जी और मनीष शर्मा जी को कोटि कोटि बधाई देते हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम भी इन्हें पसंद आया, ऐसा इन्होंने कहा है। 14 जून का सुगम संगीत कार्यक्रम भी इन्हें पसंद आया। आरती जी को धन्यवाद देते हैं मेल खत्म करते करते आखिरी की दो लाइनों में।
1: क्या बात है, तो अर्थात मई और जून दोनों ही आपने एक ही पत्र में शामिल कर लिए बंधु। आपके सुझाव को अमली जामा हम पहना चुके हैं। हमारे जो पत्र, हमारे जिन श्रोताओं के नाम एक कार्यक्रम में रह जाते हैं उन्हें हम उसके अगले होने वाले कार्यक्रम में जरूर पहले शामिल करने का प्रयत्न करते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: तो इसको इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बेझिझक होकर हमें ईमेल पत्र सब भेजते रहें।
0: अगला मेल है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा के श्रोता आनंद जोशी और तनुजा जोशी का।
1: हाँ जी।
0: लिखते हैं कि चेतना कार्यक्रम में दीपमाला जी द्वारा डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव से लीवर से संबंधित रोग के

0: कारण और निदान पर चर्चा बेहद उपयोगी लगी। विभिन्न रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग पसंद आया। पराग जी और कीर्ति जी को धन्यवाद देते हैं, हमने हमारे ही नाम लेके तारीफ सुन ली। इसी दिन प्रशांत मालवीय जी द्वारा सुनहरे पल और आपकी मीति गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, सुमधुर लगा, बहुत अच्छे गीत सुनवाए, ऐसा इनका कहना है। गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम विद्या जी द्वारा बड़ी ही रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया, ऐसा ये लिखते हैं। विशेष वार्ता में आनंद जैन द्वारा योग विषय पर चर्चा स्वास्थ्य वर्धक लगी। इसी दिन मनीष शर्मा जी द्वारा एक ही फिल्म से कार्यक्रम में धर्मात्मा फिल्म की कहानी और गीत सुनवाए गए, बहुत अच्छे लगे। साथ ही आपकी मीति गीत कार्यक्रम को भी इन्होंने पसंद किया है।
1: क्या बात है, चेतना से लेकर आपके मीति गीत तक सभी कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया। जोशी दंपति को इस पत्र के लिए धन्यवाद, आभार। और ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सी चीज़ आपको रुचिकर ज़्यादा लगती है, कौन सी बातें जो हैं वो आपके दिलों को छू जाती हैं।
0: बिल्कुल, और इसी से हमें अच्छे कार्यक्रम बनाने का बल मिलता है,
1: प्रेरणा मिलती है।
0: अगला ईमेल है 11 जून 2026 का। लोकप्रिय कार्यक्रम सुना, दिल को छू गया।
1: अच्छा,
0: कौन सा कार्यक्रम नहीं लिख पाए शायद। दिल से शुक्रिया देते हैं आपकी प्रस्तुति के लिए। आगे की लाइनों में लिखा है इन्होंने, आगे की पंक्ति में सुनहरे पत्र कार्यक्रम की इन्होंने तारीफ की है।
1: अच्छा,
0: 17 जून को मनीष शर्मा जी द्वारा पेश किया गया आपकी मीते गीत कार्यक्रम दिल को छू गया, बधाई। साथ ही इसी प्रोग्राम की प्रस्तुति के लिए आरती जी और श्वेता जी को भी बधाई देते हैं। 14 जून को प्रसारित सुगम संगीत में चंदन दास के गाए गीत सुनवाए गए, बहुत अच्छे लगे, आरती जी को बधाई। 17 जून का एक ही फिल्म से कार्यक्रम और इसकी कहानी और गीत दिल को छू गए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये श्रोता हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के नरेंद्र डोम, निशा डोमिन, प्यारी टुक टुक और प्रभा देवी डोमिन।
1: बहुत धन्यवाद आपका इस ईमेल के लिए, हमें अच्छा लगा जानकर कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आ रही है।
0: अगला ईमेल शामिल करते हैं बिहार स्टेट बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, राज और फातिमा अंसारी। इन्होंने 11 जून को सुनहरे पत्र कार्यक्रम की तारीफ लिख कर भेजी है। साथ ही 17 जून को प्रसारित आपकी मीति गीत कार्यक्रम के लिए मनीष शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम में उस समय जो शोले फिल्म की कहानी और गीत सुनाए गए, इन्होंने इसकी भी प्रशंसा की है।
1: धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए, हमें अच्छा लगा जानकर कि आपको कौन से कार्यक्रम पसंद आए हैं।
0: लगभग एक ही सरनेम के श्रोताओं का एक और मेल है, इंदिरा विहार दिल्ली से W अंसारी और उनके परिजनों का है।
1: अच्छा,
0: इन्होंने भी 11 जून का सुनहरे पत्र कार्यक्रम की प्रस्तुति को पसंद किया है। 20 मई को प्रसारित एक ही फिल्म से कार्यक्रम जिसमें शोले की कहानी और गीत सुनाए गए, बहुत अच्छे लगा, ऐसा इन्होंने व्यक्त किया है। 14 जून को चंदन दास का गाया सुगम संगीत सुनकर बहुत दिल को सुकून हुआ, ऐसा इन्होंने कहा है। प्रस्तुतकर्ता को धन्यवाद देते हैं
1: आपके इस ईमेल के लिए, आपका आभार बंधु।
0: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती ने मेल किया है। लिखते हैं 14 जून 2026 का सुनहरे पत्र और इसी दिन प्रसारित आपकी पसंद कार्यक्रम दिल को छू गया, बधाई। 14, 16 और 17 जून को प्रसारित आपकी मीति गीत कार्यक्रम पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और शोले फिल्म की कहानी और गीत सुने, इन्हें इस संबंध में इन्होंने तारीफ लिखकर भेजी है।
1: आपके इस ईमेल के लिए आपका आभार, मुझे अच्छा लगा जानकर कि आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आए हैं।
0: एक और ईमेल शामिल कर लें। हाँ। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, पद्मा टॉकीज नेपानगर से मेल कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: 13 जून 2026 को प्रातः 7:30 पर साप्ताहिक स्वास्थ्य भेंट वार्ता में डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव से आकाशवाणी खंडवा की उद्घोषिका दीपमाला शिंदे जी की वार्ता सुनी। इस भेंट वार्ता का विषय रहा स्वस्थ यकृत सुखी जीवन। वार्ता काफी स्वास्थ्य वर्धक लगी। किस तरह से हम अपने भोजन में नियंत्रण करके अपने लीवर का ध्यान रख सकते हैं, इस विषय पर डॉक्टर साहब द्वारा विस्तार पूर्वक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। सफल प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में प्रातः 7:30 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल सुना, बहुत अच्छा लगा। उद्घोषक को धन्यवाद देते हैं, नाम लिखा है प्रशांत जी का। एक से बढ़कर एक गीतों का शानदार चयन किया गया, ऐसा इन्होंने कहा है। अजनबी फिल्म का किशोर कुमार के स्वर में गाया गीत एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, इन्हें बहुत अच्छा लगा और इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
1: अच्छा लगा जानकर कि आपको कार्यक्रम की प्रस्तुति पसंद आई और ये जो सुबह सुबह की स्वास्थ्य वार्ता थी

0: ये आपको लाभप्रद लगी।
1: अगला मेल शामिल कर लें।
0: जरूर।
1: अगला मेल है, हमारे श्रोता हैं अशोक मेहता, वंदना मेहता, डॉक्टर कृतिका, डॉक्टर वरुण, और इन्होंने भेजा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से।
0: अच्छा
1: जी, और लिखते हैं, शुक्रवार दिनांक 12 जून को प्रसारित कार्यक्रम सुनहरे पल में विद्या जी द्वारा SP बालसुब्रमण्यम की गाय गीतों पर जो गीत प्रसारित किए इन्हें बहुत अच्छे लगे। 8:30 से प्रसारित आपके मित गीत कार्यक्रम, 14 जून को प्रसारित सुनहरे पल कार्यक्रम जो सुशांत सिंह राजपूत, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की स्मृति में था, इन्हें बहुत अच्छा लगा। आरती जी को धन्यवाद देते हैं। 15 जून को प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा, विद्या जी को धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा लगा ऐसा कहते हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में धर्मात्मा फिल्म के जो गीत और कहानी सुनाई गई, इन्होंने इसकी भी तारीफ लिखकर भेजी है। 16 जून को सुनहरे पल में डिस्को डांस के सुपर हीरो मिथुन दा पर आधारित कार्यक्रम श्वेता जी द्वारा पेश किया गया, इन्हें बहुत अच्छा लगा। साथ ही युवाणी, रामचरितमानस गान, निमाड़ी लोकगीत इन्हें पसंद आते हैं, ऐसा इन्होंने अपने ईमेल के माध्यम से सिडनी से प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
0: क्या बात है, हमें बहुत अच्छा लगा कि ऑस्ट्रेलिया तक आकाशवाणी खंडवा की गूंज पहुंच रही है। और हमें लिखकर जरूर बताइएगा कि किस समय आपके स्थानीय समय पर आप हमारे प्रसारणों को सुनना शुरू करते हैं। ये जानकर हमें और खुशी होगी कि हम किस समय के आपके साथी बन रहे हैं।
1: जी, अब जो मेल है वो काफी बड़ा है। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा ने सनावत से लिखकर भेजा है।
0: अच्छा।
1: साथ ही सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित और इनके परिजनों ने भी इसी ईमेल के माध्यम से अपने विचार रखे हैं। इन्होंने राग रंग कार्यक्रम की तारीफ की है जो आधारित था राग आसावरी के गीतों पर, तो इस कार्यक्रम को इन्होंने पसंद किया है। शनिवार के विशेष कार्यक्रम में खुश रहने की कला जो वार्ता पेश की गई, वार्ताकार लक्ष्मी सेन जी को धन्यवाद देते हैं। चेतना के अंतर्गत स्वस्थ यकृत सुखी जीवन पर डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव से की गई दीपमाला जी की बातचीत ने बहुत पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी मीत ये गीत कार्यक्रम के लिए प्रशांत जी को धन्यवाद देते हैं। रविवार का फोन करेगी सुने कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, इसकी भी इन्होंने व्यक्त की है अपनी प्रशंसा। सोमवार के विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रीय मलखंब खेल के बारे में पल्लवी जी ने जो वार्ता पेश की ये इन्हें बहुत अच्छी लगी। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम भी इन्होंने सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रज्ञा दीक्षित से वार्ता इस कार्यक्रम में प्रसारित की गई जल संरक्षण के संबंध में, इसे इन्होंने बहुत पसंद किया है। मंगलवार के विशेष कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर वार्ताकार सीमा भावसार जी ने जो जानकारी दी इन्हें बहुत अच्छी लगी, लाभकारी लगी। विविधा में संदीप शर्मा जी का काव्य पाठ इन्हें बहुत पसंद आया। साथ ही साथ इन्होंने बुधवार के विशेष कार्यक्रम में योग का महत्व पर वार्ताकार आनंद कुमार जैन की वार्ता सुनी, इन्हें बहुत अच्छी लगी। और धर्मात्मा फिल्म की कहानी और गीत सुनाए, इसके लिए भी मनीष शर्मा जी का इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया है।
0: क्या बात है, आपको इतने सारे कार्यक्रमों की विभिन्न प्रस्तुतियां पसंद आई हैं ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है हमारे जितने उद्घोषक साथी बंधु हैं उनका आपने दिन बना दिया, और आपके इस पत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंधुवर।
1: जल्दी से कुछ और ईमेल भी शामिल कर लें क्योंकि अब समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है हमारे लिए। जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़, सचिन प्रीति भावना ने ईमेल भेजा है रतनपुर झिरनिया से। लिखते हैं कि सुनहरे पल कार्यक्रम में SP बालसुब्रमण्यम के गाए गीत सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चेतना कार्यक्रम में लीवर की समस्या के बारे में डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो जानकारी दी इन्हें बहुत पसंद आई।
0: धन्यवाद आपका आपके इस ईमेल के लिए। आगे भी हमें कार्यक्रमों के विषय में आपको क्या अच्छा लग रहा है बताते रहिएगा।
1: एक बड़ा सा ईमेल भेजा है हुकुमचंद कटारिया जी ने, उनके परिजनों ने, सनावद से मेल कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: इन्होंने ऐसा सुझाव दिया है, जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि मोबाइल ऐप का जमाना आने से आजकल कोई भी आकाशवाणी सुन सकता है, इसे सुनना आसान हो गया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि खंडवा और खंडवा के आसपास के श्रोताओं को 70% स्थान दिया जाए और अन्य शहरों और गांवों के श्रोताओं को 30% स्थान दिया जाए, क्योंकि आजकल हर आकाशवाणी का ऐप आने से सब सुलभ हो गया है। कुछ उद्घोषक भाई बहन पत्रों को विशेष महत्व देते हैं। कहीं श्रोता हैं बिकनगांव के संतोष सातले, ढकलगांव के संजय चौरे, ये श्रोता सिर्फ पत्र ही लिखते हैं, उनके पत्रों को जरूर स्थान दिया जाए।
0: ये जो इन्होंने कहा है और श्रोताओं का नाम भी लिया है।
1: हाँ।
0: मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे भी जो सूची है उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे कुछ श्रोता हैं, केवल ये नहीं, 2-4 और
1: जी,
0: भी
1: जी,
0: हैं, वो नियमित रूप से केवल पत्रों को देते हैं।
1: हाँ।

0: कुछ हमारे श्रोता हैं जो ईमेल नहीं करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं उनको शामिल करने की। और हाँ, हमारे जो आसपास के रेडियो पर सुनने वाले हमारे जो साथी हैं उनको तो हम सबसे पहले पसंद करना, इसलिए वो हमारे लिए इतने ज़्यादा प्रिय हैं कि ऐसा लगता है वो हमारे परिवार के सदस्य हैं जो लंबे कई अरसे से हमसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, पर श्रोताओं में भेदभाव हम नहीं कर सकते। हमारे पास जो पत्र आते हैं हम उनका सम्मान करते हुए, वो भी हमारे श्रोता हैं, उन्हें भी हम शामिल करने का मतलब उतना ही यत्न करते हैं जितना किसी अन्य को करें। पर हाँ, जहाँ तक बात प्रिय की है तो वो तो हमें वही जो वर्षों से, दो दशकों तीन दशकों से जुड़े हुए हमारे साथी हैं उनसे तो लगाव ज्यादा होगा ही, समय के साथ बढ़ता ही है प्रेम तो।
1: बिल्कुल सही है उसकी। बिल्कुल सही। तो इसी ईमेल में उन्होंने 14 जून का फोन करेगी गीत सुने कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया है, और साथ ही सरकार के 12 वर्ष को लेकर जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ उसमें अशोक गीते जी के विचार इन्हें बहुत अच्छे लगे। 16 जून से स्कूल शुरू हो गए हैं, इसी विषय पर महक मालवीय जी की वार्ता इन्होंने बहुत पसंद की है, और साथ ही 16 जून का विशेष कार्यक्रम जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय पर भी जानकारी दी गई इन्हें बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर श्रीवास्तव से की गई बातचीत भी चेतना कार्यक्रम में इन्होंने पसंद की है। तो ये आज का हम अंतिम ईमेल शामिल कर चुके हैं।
0: धन्यवाद बंधुवर आपका इस पत्र के लिए, और अब समय हो चला है आपको समाचारों की ओर ले जाने का, तो अब अनुमति दें मुझे यानी चिन्मय दीक्षित को
1: और पराग गोखले को।
0: आपसे अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए
1: नमस्कार।
2: सुनहरे पत्र।
1: अभी आप सुन रहे थे सुनहरे पत्र, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद हम समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
7: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
8: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
6: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
9: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
6: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने

0: कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने

0: कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
4: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता

0: हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10। उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 बजे हैं। अब पेश है सुगम संगीत। इसमें आज कलाकार हैं आशा भोसले और अदनान सामी। आरंभ करते हैं अदनान सामी के गाए इस नगमे से।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, आज कलाकार अदनान सामी और आशा भोसले। इसी कड़ी में लीजिए पेश है आशा भोसले का गाया ये गीत।

सुगम संगीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। इसी कड़ी में पेश है एक युगल गीत आशा भोसले और अदनान सामी की आवाज़ में।

0: इस युगल गीत के साथ ही सुगम संगीत को देते हैं अब यहीं विराम। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद हम प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांवों जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद

वे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। क्योंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया, इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नजर रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं, वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आजादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आजादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, यह आकाशवाणी भोपाल।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। कुछ ही पलों बाद हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।

0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाज़ों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा,

था कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा

0: आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना।
1: गोरा गोरा मुख

0: आया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माई लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दान सिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया।
1: अभी विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। कुछ ही पलों बाद हम जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। सतना जिले में भी इन दिनों प्री मानसून गतिविधियों का दौर है। तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश होने से तापमान में कमी आई है। जिले में अति वर्षा और बाढ़ आपदा स्थिति में आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07672223211 यानी 07672223211 है। कंट्रोल रूम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम के लिए प्रभारी अधिकारी राहत शाखा और डिप्टी कलेक्टर लक्ष्य राम जांगड़े को बनाया गया है, जिनका नंबर 9993754244 यानी 999-375-4244 है। सतना जिले में खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उप संचालक किसान कल्याण कृषि ने बताया कि वर्तमान में सतना और मैहर जिलों में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित विभिन्न उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गत माह स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहे। विगत दिनों प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने मैहर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट भवन के पास 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत भवन को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ तैयार किया जाए। प्रदेश की नगरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के रेगांव विधानसभा क्षेत्र में 11 से 15 जून तक सघन भ्रमण एवं जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेगांव मंडल के प्रवास के दौरान राज्य मंत्री ने जनसंपर्क, जनसुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्रवासियों को 213 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। कार्यक्रम के तहत उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जिले के जवाहर नगर स्थित दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में स्विमिंग पूल सहित शेष बचे निर्माण कार्यों का शुभारंभ सांसद गणेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ये स्विमिंग पूल युवाओं में तैराकी के प्रति रुचि बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सतना और मैहर जिले में 12 से 18 जून तक नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सतना जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सतना जिले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय समय पर टीकाकरण कराए जा रहे हैं। सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभाग के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया। ये कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है। सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। इसी तारतम्य में शहर के प्रसिद्ध जगत देव तालाब में जिला पंचायत और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालाब सफाई के लिए संकल्प लेकर सफाई कार्य शुरू किया। सतना जिले के मझगवां विकासखंड अंतर्गत नकेला में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को औषधि पौधों की उन्नत खेती, प्रसंस्करण और उपयोग विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। और सतना जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम

0: अभी आप सुन रहे थे सतना जिले की चिट्ठी। ये आकाश
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। स्वीकार कीजिए पराग का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के गीत सुनाएंगे और अब से लेकर 10:40 तक आप हमारे साथ बने रहें, यही आपसे अनुरोध है। साथ ही अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं और शामिल करते हैं हमारी श्रोताओं की पसंद के फिल्मी गीत। और इन पर इन्हें सुनाने के लिए सबसे पहले हमें अनुरोध मिला है पत्र के माध्यम से घंटाघर चौक खंडवा के हमारे श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रत पंचोलिया का। इन्होंने अपने पत्र में पौधे लगाओ, पर्यावरण को सुरक्षित रखो, ये स्लोगन भी दिया है। साथ ही पत्र आया है कंवर कॉलोनी बड़वा के श्रोता प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली का। अब कुछ ईमेल शामिल करते हैं। मेल है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजेश जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित और प्रथमेश का। साथ ही इसी मेल में प्रणाली, सर्वद, कुमार, सानवी, कल्पना और उनके परिजनों के द्वारा भी अपनी पसंद जाहिर की गई है। अगला मेल है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति और प्रयाग चौधरी का। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, पार्टिबा शर्मा और किरण ठाकुर का। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोना नीला नारंग। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक। साथी बलवीर सिंह। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा से मेल करने वाले श्रोता हैं प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी का मेल हमें मिला है। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल का मेल हमें प्राप्त हुआ है। सनावत से पसंद जाहिर की है अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप की फरमाइश है। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान की फरमाइश। नर्मदा कॉलोनी बड़वा से पुष्पेंद्र रावल, अयांश, इंदिरा, निहारिका, निशा, सोनू, मोनू रावल की फरमाइश है। साथ ही फरमाइशी ईमेल आया है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल का। सनावत से ही हमें पसंद भेजी है हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया ने। महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलअत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत और नुजहत जहां। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश की फरमाइश हमें मिली है। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश

है बहार आने तक इस फिल्म का गाना। इसे गाया है पंकज दास और अनुराधा पौडवाल ने, लिखा है इंदीवर ने और संगीत है राजेश रोशन का। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद से पेश है बहार आने तक फिल्म का ये गाना।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी खंडवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है खूबसूरत फिल्म से, जिसे पसंद किया है ग्राम आष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोणे, योगिता प्रियाली और पार्थ ने, मूंदी चौक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी ने, पटना बिहार से फरमाइश हम तक पहुंची है वसीम अकरम सालेहा खातून और उनके परिजनों की, जेल रोड जालंधर से संदीप कौर बेलदार, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी निशा परवीन और डब्ल्यू अंसारी, उमरखेड़ से अजीता मदारी और प्रमिला मदारी, छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव संदीप जाटव प्रभा रानी और कशिश जाटव, बक्सर से असलम अंसारी शमसुल हक और राज अंसारी, मधुबनी बिहार से फरमाइश करने वाले श्रोता मोहम्मद साबिर परवाना और वैशाली जयपुरिया, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जौहरी की फरमाइश, शाहजीनगर देगलू जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर और करमजीत की फरमाइश है, सौंगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित देविका चंदन गजेंद्र कुमार चंदन हेयांश कुमार चंदन की फरमाइश हम तक पहुंची, अंबागढ़ चौक छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रिहान, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने फरमाइश जाहिर की, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा, और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो आप सभी की पसंद से पेश है खूबसूरत फिल्म का गाना। इसे गाया है अभिजीत और नीरजा पंडित ने।

राधे श्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी, कामेश, भारती और राहुल, तारानगर बड़भा से भारती कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, पार्थ और अण्वी कुशवाहा, सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला चौबे और रिमझिम और सक्षम, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और उनके परिजनों की फरमाइश हम तक पहुंची। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर के श्रोता हैं मुकेश, कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, इनके नाम हम पढ़ चुके हैं। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार की फरमाइश। बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल, मोरटक्का माफी खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल की फरमाइश। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्ज्वल दास मानिकपुरी ने फरमाइश भेजी है और साथ ही अगले गीत के लिए हम तक अनुरोध किया है। बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार, डॉली, पूजा, राधिका, प्रभा और अल कबीर तामूरिया का। किकिर मेटा बिलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मिणी शर्मा की फरमाइश हम तक पहुंची। ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, सार्थक, आदर्श और अलौकिक चंसोलिया फरमाइश कर रहे हैं। साथ ही फरमाइश कर रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद है आतिश फिल्म का गाना, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है और आवाज़ है जॉली मुखर्जी, अलका याग्निक की।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद, बुरहानपुर से बुरहानपुर से मोहन मुदलियार, आरुष आरशिया और राजेश कुमार, बिहार स्टेट डुमराव से आसमान सारी आमना परवीन और उनके परिजन, गाजियाबाद से सीमा गांधी मनोहर लाल गांधी, डोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमीन, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना दिव्या भारती और उमा राज, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता शशांक और सीमा, राधेश्री सिंघाड़ तलाई खंडवा से श्रोता हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और इस कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े वसंतराव भोजने, पी एस नावकर। बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा तई मानकर, दीपाली श्लोक। और बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक और संदीप मक्काड। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और सुनीता साहनी की फरमाइश हम तक पहुंची है। साथ ही अनुरोध मिला है पलेरा टिकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष का। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया की फरमाइश। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार की फरमाइश।

अरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो की फरमाइश है। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले ने अपनी फरमाइश हम तक भेजी। साथ ही फरमाइश आई है अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली और समर फुलमाली की। प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले और मंदा खंडाले ने भी अपनी पसंद जाहिर की है ईमेल के माध्यम से। साथ ही ईमेल हमें मिला है सरगुजा मेन पार्ट से सरिता डोमीन, प्रमिला, आशा और उनके परिजनों का। आप सभी श्रोताओं की एक ही पसंद है मृत्युदंड फिल्म का गाना, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत आनंद मिलिंद का और गायक कलाकार अलका याग्निक और उदित नारायण।

0: मृत्युदंड फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।
3: ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा।
0: मनोरंजन का सिलसिला चलता रहेगा और अब इसी कड़ी में लीजिए पेश है लखनलाल हिरवे और साथियों के गाए निवाड़ी लोकगीत। आरंभ करते हैं संतोषी माँ के इस भजन से।

आप सुन रहे हैं लखनलाल हिरवे और साथियों के गाए लोकगीत। इसी कड़ी में लीजिए पेश है माता पार्वती का भजन।

0: ईछे निमाड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं लखनलाल हिरवे और साथियों के गाए लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लखनलाल हिरवे और साथियों के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं?
2: आकाशवाणी खंडवा पर।
0: हम निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं FM एंड 101.2 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों बाद हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस भक्ति गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। श्रोताओं, अब हम बैतूल के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद किया हुआ ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम साबरी की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित। पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने

0: आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायल पुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कैसे

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव।

0: पिता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर, नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है, और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं, और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं, और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे काव्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है तो आप भी बताइए कहाँ गए।

थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्म आ गई, गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो। वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है, लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है, और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं, और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला से एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद, और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर, आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की। ये फिल्म है सवेरा, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये

गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य, संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है, जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य, सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास, साहस, धैर्य, सत्कर्म, सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संग जीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी यह सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा है। इस बार हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं, तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहां गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटी के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लग ही जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पैकेजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौका में संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है, इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं, और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और

अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था, पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं, माँ जी नैया ढूंढी किनारा, इस गीत से हमें बेहद मज़ा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूँ और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है, थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहाँ घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ जहाँ नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी, हमारे ज़माने में गंगा नदी पर एक सिर्फ पुल, एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे, सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी, उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है, हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की, वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं, केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था, पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर भेंट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा, बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है, आदमी कितना ही हताश परेशान हो उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत, किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से न आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी हुई है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उस

का जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही है उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई है, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफर करते हैं, बसों से सफर करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफर होता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहाँ गाँव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वही एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज़ का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी व्यक्ति और समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
2: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
1: राष्ट्रपति आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम की आरती में भी शामिल होंगी। इस दौरे में 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का दौरा भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि उनका प्रदेशागमन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की रणनीति से भी अवगत होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल में ब्रह्म कुमारीज के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की भागीदारी से आध्यात्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने के बहुत करीब है और यदि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से इस योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक शत्रु के समक्ष शीश नहीं झुकाया और मातृभूमि के सम्मान के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग सिख और पद्मश्री प्राप्त मिल्खा सिंह को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान और विकसित भारत की पहचान है। इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल होंगे। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो रहा है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया नगर पालिका परिषद में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पत्रकारिता के अध्येता एवं इतिहास लेखक विजय दत्त श्रीधर को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत पुरानी छावनी के PM श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण

0: सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।

नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा

0: प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर

0: 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ें लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका है।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: जी हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका?
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे?
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे। और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो

0: सकती हैं भाई, खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हां बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका, और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में, और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी, और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहाँ का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो

0: जब आप उस चीज को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल, और पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था, और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा,
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो, और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था, और गाँव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पर ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी,
0: और वो आकाश ने वो ए श्रेणी की
1: कलाकार थी। देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया,
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारेजू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताए भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने

0: ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का, ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल, कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके की फ्रॉड काफी होती है।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे, वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मांगा है कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं, और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको
1: पहले से पढ़ना चाहिए,
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है, और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता, और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज दे रहे होते हैं।

0: हमने मंगाई, बिना खोलकर भी नहीं देखा, और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले। तो जरूरी है, हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर, वहां से खरीदें।
0: जो देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देख कर खरीद ली जाती है चीजें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है कई बार लोगों के

0: बस काम के चलते समय नहीं होता, त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार हम ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी है आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती है, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं।
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह

0: मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज
0: ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी की जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है और लंगर यानी कि जो भोजन प्रसाद होता है उसकी व्यवस्था की
1: बिल्कुल। और लंगर का खाना चंचली इतना इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
0: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
0: गीत सुन लेते
1: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय

0: कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
1: बहुत कुछ लिख डाला है भाई जी। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
0: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है,
1: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
0: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही
1: होता है, ये तो है
0: ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
1: हूं। बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
1: अच्छा।
0: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
1: जी। बिल्कुल,
0: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
1: बहुत जरूरी।
0: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद भी गिरी है तो वो ना हो,
1: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज, दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
0: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर, पालक, इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
1: वाह क्या बात है। और एक हमारे श्रोता है जो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
0: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए, और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो, करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को

0: आठ दिन अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे आठ दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ़ डालकर मक्खन को तुरंत रखें, और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे की।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले, और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल।

0: जाऊंगी।
1: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का। तो आरती श्रीवास्तव को और चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा।
1: हाँ हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: वो एक कुंडो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूं मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इतने 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: बेफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाने?
1: नहीं मैम, नहीं नहीं पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नईम मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीपावर पेट पेट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी है। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।

0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे मान
0: वो
1: आपको पता है ये पहलगाम हाँ, कश्मीर में पड़ता।
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: सर्वज्ञ वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 67-62 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ,
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाह,
1: वाल रेडियो।
0: क्या बात है, तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब तो, सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: हाँ, मोबाइल।
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी।
1: दिक्कत होती थी, हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था
0: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने उतने सारंगी वगैरह इतने भी उसका उस टाइम समान, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का, हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया चलते।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख।
0: हाँ।
1: वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलने की।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: चलता है फिर तो।
0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास 4 फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये 4 फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के बुट्टा भी बाजार में आने लग गया है ना हमारे इधर, तो हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: देखी है जी मैंने।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा, मतलब उसमें
0: जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया। सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रही हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर। लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें आजाद रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा।
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा सुंदर लगता है।
1: मोरों के बीच में गाँव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, जुआर, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
0: तो। बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है?
1: बिल्कुल आते हैं, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
1: ममता जी बहुत बड़े लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत बड़े लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते है, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन, यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है।
0: हाँ।
1: जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है, लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
1: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉर्पोरेशन में बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।
2: दिल में

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने आए हैं, मैं अपने बेटे के लुक को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद का, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी, और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी तो लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन की गुठलियाँ होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होके एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और जैसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे तावेल लेके जाए, पानी की बोतल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और उनकी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करते हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की ढाखन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और

0: अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
1: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
0: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
1: हुआ करता था
0: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना, उस टाइप का था,
1: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
0: जी जी,
1: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
0: जी जी जी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना। मैं

तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 28670288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?
1: पहली नजर क्या असर कर दे

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना सवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन। खोया खो...

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों, अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर गोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोरजी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओ, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहां आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है।

0: सकती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित

0: पुलित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ

0: सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
1: हाँ।
0: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया

0: उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के ठीक 6 बजने को है। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

ढलती शाम का नज़ारा भी कितना सुहाना होता है। कार्यक्रम होता है युववाणी और आपका और हमारा मिलन होता है। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का इस सुहानी सी शाम में, और स्वीकार कीजिएगा आपकी रेडियो दोस्त सिमरन गार्गव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज दिन है गुरुवार और क्रम रंगों से भरा इंद्रधनुष। दोस्तों, इंद्रधनुष रंगों की गहराई में हम खो जाएं, पर उससे पहले आपसे हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में RTI सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप खोजते रहिए और मैं तो हूँ ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताने के लिए, पर तब तक आप हमारे साथ चलते रहिए युववाणी में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आइए दोस्तों, आज की चर्चा के अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं रानू शर्मा जी से की गई बातचीत, जो कि एक एसोसिएट इंजीनियर के पद पर अभी कार्य कर रही हैं।
1: नमस्ते साथियों, मेरा नाम रानू शर्मा है। मैं रतलाम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कुछ समय पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद मैं एमपी गवर्नमेंट के लिए MPSEDC ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रही हूँ।
2: जी रानू जी, हमारे आज के युववाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रानू जी, जैसा कि आपने इंजीनियरिंग पूरी की, तो आप दिन भर में कितने घंटे स्टडी करती थी?
1: जैसे जब मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी ना, तब तो ऐसा होता था कि मुझे कॉलेज जाना होता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में ही लेक्चर्स रहते थे, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी। तो कॉलेज की इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो पढ़ाई होती थी, मैं वो कॉलेज में करती थी। और उसके अलावा एक चीज होती है कि आजकल के टाइम पे ना, अपने आप को स्किलिंग करते रहना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉलेज की पढ़ाई तो हमारी अलग चलती रहती है, और उसके साथ ना मैंने कॉलेज में रहते हुए जैसे कि कोडिंग लैंग्वेजेस की कोचिंग होती है, वो मैंने पर्सनली ज्वाइन कर ली थी। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की, मतलब ऐसे जो आजकल फेस करते हैं ना यूथ, प्लेसमेंट
2: जी
1: रिलेटेड, जॉब रिलेटेड इश्यूज, उसमें हेल्प हो गई थी मेरी बहुत। तो मैं मेन चीज तो यही बोलना चाहूंगी, आजकल जैसे इंजीनियरिंग करियर बहुत सारे लोग चूज करते हैं, और नीट और JEE ये दो ही मेन चीजें होती है जिस पे सबका फोकस होता है। तो इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस एग्जाम्स, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी सबको कि जितना से ज्यादा हो सके अपने आप को एक स्किल में मास्टर करना इम्पोर्टेंट होता है।
2: जी रानू जी, अभी आपने जैसा हमें बताया कि आप एमपी गवर्नमेंट में वर्क कर रही हैं, तो
1: हाँ,
2: आपने ये फील्ड कैसे ज्वाइन करी?
1: एक्चुअली ना ऐसा होता है कि जिसमें मैं काम कर रही हूँ ना, वो भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो IT कंपनी ही है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए जैसे कंपनी जाती है ना, तो वो भी एज ए कंपनी हमारे कॉलेज में आए थे।

0: ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है MPSEDC, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे सिंपली जैसे गवर्नमेंट की दूसरी एग्जाम्स होती है ना कॉम्पिटिटिव, उसी तरीके से मुझे एक एग्जाम देनी पड़ी थी जिसके लिए गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाती है जो होता है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम। अभी रिसेंटली भी वो प्रोग्राम लाइव है। अगर जैसे ना मैंने जो प्रोग्राम किया था वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी प्रोग्राम, तो ये सेम प्रोग्राम अभी ऑनगोइंग है। गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को अभी भी रन कर रही है, तो जिसके लिए एप्लीकेशंस अभी ओपन है। तो इन केस ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो 25 या 26 ईयर में बीटेक अपना कंप्लीट करके पास आउट होंगे, वो अगर अप्लाई करना चाहते हो इस प्रोग्राम के लिए तो वो भी कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब मैं अंत में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगी, उन्हें कैसे बताना चाहेंगी कि यदि उन्हें इस फील्ड में जाना हो या MP गवर्नमेंट के लिए काम करना हो तो वो उन्हें क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकते हैं?
0: एक चीज तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर MP गवर्नमेंट के साथ काम करना ही मतलब मेन आपका मोटिव है या गोल है, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी भी जॉब्स होती हैं जो प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जहाँ पे भी IT इंजीनियर्स के रोल वगैरह होते हैं, और उसके लिए प्रोसेस जो होती है कम्प्लीटली वैसे ही चलती है कि आप उसका एग्जाम की डेट वगैरह होती है, मतलब अप्लाई करने का ऑप्शन आता है तब आप कर सकते हैं, वही वाली प्रोसेस रहती है। और एक चीज ये होती है कि आजकल ना AI मतलब बहुत ही ज्यादा हाइप में है, कह सकते हैं अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, तो अपने आप को AI रिलेटेड चीजों से जितना ज्यादा हम अपस्किल कर सकते हैं उतना ही हमारा इस इंजीनियरिंग वाली फील्ड में या मेरी जो IT वाली फील्ड है इसमें हेल्प हो सकती है, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ना। मैं सभी युवा साथियों से ये कहना चाहूंगी कि जैसे आजकल के टाइम पे ना सब लोगों को ऐसा हो गया कि बहुत इम्पेशेंट हो गई है, आजकल के जो यूथ है वो ऐसे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं पूरे टाइम और बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं सब चीजों की, और इस कारण से क्या होता है ना वो अपने बात से कभी कभी भटक जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी उन सभी को कि आपका पर्टिकुलर जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, तो तब तक के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने जो नॉलेज में है चीजें उन पर वर्क करके हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं।
1: रानू जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और आपने हमारे युवा साथियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर दिया।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आज की चर्चा के अंतर्गत रानू शर्मा जी से की गई विशेष बातचीत, जिन्होंने इंजीनियरिंग को लेकर हमें बहुत सी जानकारियां दी।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्रम की ओर। दोस्तों, नीले आसमान के नीचे ताज़ी हवा और अपनों का साथ, पिकनिक का मज़ा है कुछ खास। दोस्तों, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज बहुत खास दिन है। सूरज की धूप, स्वादिष्ट खाना और हरी भरी घास, पिकनिक के लिए बिल्कुल सही है ये मिजाज। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, आज इंटरनेशनल पिकनिक डे है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पिकनिक के लिए भी कोई दिन होता है, पर जब हमें परिवार के साथ या दोस्तों के साथ अच्छे पल बिताना हो, उसके लिए कोई खास दिन नहीं होता। दोस्तों, यह दिन 18 जून को मनाया जाता है और हमें सिखाता है कि अपनों के साथ कुछ पल बिताने चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छे पल ही रिश्तों को मजबूत करने, मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों, पिकनिक की खास बात यह है कि व्यस्त और मशीनी दिनचर्या से दूर रहकर सुकून के पल बिताने का बेहतरीन अवसर है। हरे भरे वातावरण और प्रकृति के सानिध्य में समय बिताने के मूड बेहतर होता है और शांति का अनुभव होता है। प्रकृति के गोद में सुकून के पल, यही है पिकनिक का असली हल। दोस्तों, बेफिक्र होकर अपनों के साथ कुछ खास पल, और चलिए, हमें भी आपकी फिक्र है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले के हर बोलो हमने सुनी कहानी थी। साहस देशभक्ति और महिला सशक्तिकरण की अद्भुत प्रतिमूर्ति थी। छोड़कर धागे और सुई जिसने तलवार उठाई थी, वीरों की तरह मैदान में जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई थी, मातृभूमि की रक्षा के लिए जो हंसते हंसते बलिदानी हो गई, इतिहास के पन्नों में अमर वो भारत की रानी हो गई, जिसकी वीरता ऐसी जिसके आगे झुक गया हर एक तूफान था, वो कोई और नहीं, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई वीरता, साहस और देशभक्ति की अमर प्रतीक थी। पीठ पर बालक, हाथों में तलवार, दुश्मन पर जो बनकर काल छा गई, इतिहास के पन्नों में अमर वह भारत की वीरांगना रानी कहलाई। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की वह पहली मूरत थी, तलवार की धार पर लिखी जिनकी सीरत थी। साथियों, झांसी की रानी ने सिखाया हमें अपने हकों के लिए लड़ना, और यही उनकी फितरत थी। 18 जून 1858 को उन्होंने ग्वालियर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का दिन उनके अदम्य साहस, देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। दोस्तों, ऐसी वीर साहसी रानी लक्ष्मीबाई को हमारा नमन।

दोस्तों, सच्ची खुशी और कोई नहीं, बस संगीत की एक मीठी धुन है। रोज़ 20 मिनट गाने सुनने से दिमाग के लिए जिम करने जैसा होता है, जिससे संगीत आपकी याददाश्त को मजबूत रखेगा। दोस्तों, आजकल अकेलापन सभी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां बन रहा है। इसका इलाज भी आसान नहीं होता, लेकिन साथियों, कई संस्थानों के शोध में पाया है कि इन समस्याओं के लिए संगीत नॉन ड्रग थेरेपी के तरह काम करता है। रोज़ाना 20 मिनट गाने सुनना दिमाग के लिए जिम में कसरत करने जैसा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई व्यक्ति संगीत सुनता है तो यह दिमाग के सिर्फ सुनने वाले हिस्से को नहीं बल्कि 3 अन्य भागों को भी फायदा पहुँचाता है। दोस्तों, पुराने गाने उनकी तो बात ही अलग है। पुराने गाने सुनने से दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय रहता है जो यादों को संभाल कर रखता है। रोज़ाना सुबह योग के समय और योग के साथ 20 से 30 मिनट का संगीत दिन भर की स्फूर्ति देता है। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां संगीत शुरू होता है। साथियों, इसीलिए हम भी कार्यक्रम के बीच बीच में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनवाते हैं आपको गीत, ताकि आपका मन भी हमारे कार्यक्रम में यूं ही लगा रहे। तो चलिए इसी बात पर सुनवाते हैं आपको ये गीत।

वतन की शान है बेटियाँ, भारत का अभिमान है। मुश्किलों में चट्टान बन जाए, यही देश की असली जान है। दोस्तों, देश की बेटियाँ आज हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। वे केवल परिवार की शान नहीं, बल्कि राष्ट्र की सशक्त आधारशिला हैं। दोस्तों, भारत में चल रहे वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में हमारे देश की बेटियों ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दोस्तों, देश की बेटी दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट लिए और वीमेंस T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। भारतीय खिलाड़ियों ने 11वीं बार पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया। दीप्ति दुनिया की टॉप विकेट देकर बनी। दोस्तों, मुकाबला तो अभी जारी है। अब देखना ये है कि हमारे देश की बेटियां किस तरह चौके और छक्के लगाते हुए मैच के अंत तक और जीत की लकीर पर अपना हाथ रखती हैं और देश की जीत बरकरार रखती हैं। तो चलिए, उनके हौसले को बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। चलते चलते बता देते हैं आपको हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न के उत्तर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न था, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है नील नदी। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, भारत में RTI सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? इसका उत्तर है 12 अक्टूबर 2025। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की दी अनुमति आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट सिमरन गार्गो को। नमस्कार।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान है और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है।

0: श्री हेमंत खंडेलवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की हेलीपैड पर अगवानी की। तत्पश्चात कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला समारोह स्थल पर पहुंचा। आयोजन स्थल पर श्वेत भव्य वर्षारोधी मजबूत पंडाल लगाया गया था, जिसमें लगभग 4000 लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। सभी के प्रवेश हेतु अलग अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए थे। सुरक्षा कर्मी सघन जांच और एंट्री पास देखकर ही लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कर रहे थे। मंच पर विशेष अतिथियों के बैठने की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की गई थी। यहां पहुंचकर महामहिम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण एवं ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ फोटो सत्र भी पूरा किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और विकास की झलक भी देखने को मिली। यहाँ बैतूल की अनूठी स्थानीय कला, हस्तशिल्प और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करती हुई विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। साथ ही वन विभाग द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण, वनोपज और जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को जीवंत रूप से दिखाया गया था। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के गायन से हुआ। फिर मंच पर विधिवत दीप प्रज्वलन किया गया तथा मंच पर उपस्थित सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीके मंजू दीदी संचालक बैतूल मध्य प्रदेश द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया।
1: आज हम सभी के लिए विशेष बैतूल वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत खुशियों का दिन है। मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। सपना तो बहुत बड़ा था, दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी। दिमाग ने कहा था असंभव, लेकिन दिल ने कहा था संभव। और इन खुली आंखों से मैंने जो सपना देखा था, आज वो सपना हम सब के सामने साकार हो रहा है।
0: इसके बाद प्रस्तुत स्वागत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया।

श्रोता हूँ, आज बैतूल नगर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयासों से आध्यात्मिक जागृति से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण इस विषय पर महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा विधायक बैतूल

0: इस अवसर पर जोनल संचालक मध्य प्रदेश बी के शैलजा दीदी ने कहा,
1: आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियां जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को रोपने की, इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना और उनके गहरीकरण के प्रति जागरूक रहना, ये आपका दिव्य कर्तव्य रहा है। ऐसे आदिवासी समाज के जागृति क्या केवल भौतिक विकास द्वारा संभव है, या इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है? आध्यात्मिकता हमें स्वयं के अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के मूल गुणों से परिचित कराती है। मूल गुणों में शक्ति है।
0: कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास विके ने अपने उद्बोधन में जनजातीय समुदाय हेतु सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की।
2: आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण

0: क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। सबसे पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल की ओर से भारत की प्रथम जनजातीय महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओडिशा के एक छोटे से जनजाति गांव में जन्मी एक साधारण बालिका का भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान की महानता और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज जब आप बैतूल की इस जनजाति बहुल भूमि पर पधारी हैं, तब यहाँ का प्रत्येक जनजाति परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, आपकी अंतर्वेदना और देश की जनजातियों के प्रति अथाह संवेदनाओं के फलस्वरूप धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि कर्मयोगी, संसदीय संकुल विकास परियोजना, सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी अनुवांशिक बीमारियों के प्रति ठोस कार्य योजनाएं बन सकी हैं।
1: मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा,
2: राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो अब मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ, यहाँ नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूँगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए, पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिकता भी ध्यान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे।
1: राष्ट्रपति जी द्वारा कलश एवं ध्वज स्थापना द्वारा महासम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा की गई।

0: आध्यात्मिक जागृति आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का मूल आधार है। अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली इन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का एक अवसर देती है। इस बात को रेखांकित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
1: उपभोग की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक सुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है।
0: आध्यात्मिकता आदिवासियों की जीवन शैली में नैसर्गिक रूप से बसी है। इस बात पर बल देते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा,
1: जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही आध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई

0: वो आध्यात्मिक तारीफ भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। वो प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं।
1: राष्ट्रपति जी आगे कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।
0: धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल को भी दूषित नहीं करते, तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुन्द्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है, फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं।
1: अपने उद्बोधन के अंत में बैतूल जिले और उनके निवासियों के स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
0: मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे हैं। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तब तो समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और आध्यात्म के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, जहां आध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारी समावेश की विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगायन के सामूहिक गायन से संपन्न हुआ। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हेलीपैड पर गरिमामयी विदाई दी गई। अन्य अतिथिगण भी अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर चल पड़े। श्रोताओं, ये थी महामहिम राष्ट्रपति के एक दिवसीय बैतूल प्रवास की रेडियो रिपोर्ट। वाचक योगेश्वर, संकलन प्रवीण चौरे, तकनीकी सहयोग कांता प्रसाद टिकारे और अशोक सोनारे, और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेष

0: से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड अवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल ओपन अप मेनी पाथवेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा माल वाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुनी रहे आज निमाण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ, 870-001-4242।

0: नेता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: FM बैंड 101.2 MHz पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
3: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
5: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
6: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
5: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
6: क्यों?
5: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
6: वो कैसे?
5: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
6: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
5: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
6: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
5: आप कब आ रहे हैं
6: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ। 8700।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
9: TLI है ना?
10: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में एआई, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। आईटी पार्क 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
0: राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए ओंकारेश्वर क्षेत्र को 19 जून तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान आज कई शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने मिस्ट्रल एआई के सीईओ आर्थर मेंट्स से भारत के बढ़ते एआई इकोसिस्टम पर, एलस्टॉम के सीईओ मार्टिन सीएन से रेलवे आधुनिकीकरण पर और सेंट गोबेन के चेयरमैन बेनोइट बाजिन से निर्माण सामग्री क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। तीनों कंपनियों ने भारत में और अधिक निवेश तथा विस्तार की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, नदी संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान समग्र दृष्टिकोण से किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की परिवर्तन गाथा देश के युवाओं की भी गाथा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान स्कूल चले हम अभियान के तहत बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने दूरबीन, रॉकेट मॉडल और नक्षत्र ट्रैकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर में निर्माणाधीन आईटी पार्क 3 का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाना उनकी सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि 20 जून को देशभर में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे।
2: 20 जून पीएम किसान उत्सव दिवस, इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं और अभी 20 तारीख को फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश के सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1 करोड़ 47 लाख

0: एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में नक्सलवाद उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा और इस महीने के अंत तक खातों में ब्याज राशि जमा होने की संभावना है। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो चुका है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप ए के मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन ही बना पाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विभाग के डीएसडी पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। सीहोर के बिल्किसगंज सांदीपनी विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं। अशोकनगर जनपद पंचायत ईसागढ़ में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। गुना में पॉली हाउस एवं गुलाब की उन्नत खेती पर विशेष प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। शाहजहांपुर जिले के राजीव गांधी महाविद्यालय काला पीपल के सभागृह में आज सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जबलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के द्वारा आज राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को नूतन खेल परिसर स्टेडियम मंदसौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के बदनावर में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविर का समापन हुआ और नीमच डाक संभाग के द्वारा 20 जून को डाकघरों में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में एआई, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। आईटी पार्क 3 का भी लिया जायजा और 20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला हमारा सभी भाई बहन नखा, आपकी बहन माधुरी सेन की राम राम। भाई बहन, भारत की आजादी को इतिहास उन अनगिनत क्रांतिकारी न त्याग न बलिदान की अमर गाथा छे, जिन्हें अपना प्राण न की आहुति दई खन देश का गुलामी की बेड़ी नसी मुक्त करवायो। भाई बहन, इना क्रांतिकारी न में सी एक छे रानी लक्ष्मीबाई। न आज छे रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि, तो उनख हमारी ओर सी शत शत नमन। भाई बहनों, रानी लक्ष्मीबाई को जन्म 19 नवंबर सन 1828 ख वाराणसी में हुयो थो। उनको बचपन को नाम मणिकर्णिका मनु थो। वो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगना थी। उन्न अंग्रेज न की हड़प नीति को विरोध करता हुआ अपनी झांसी की रक्षा का लेना साहस पूर्वक युद्ध कियो। न उन्न दृढ़ संकल्प का साथ कयो कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य आज भी साहस न स्वाभिमान को प्रतीक मान्यो जाए। भाई बहनों, सन 1857 का विद्रोह का दौरान अंग्रेजी सेना न झांसी का किला ख घेरी लियो। तब रानी लक्ष्मीबाई न अपनी सेना का साथ कई दिन तक बहादुरी को युद्ध कियो, न स्वयं मोर्चा पर डटी रही। कयो जाए कि जब झांसी का किला ख अंग्रेज न घेरी लियो थो, तब रानी न अपना दत्तक पुत्र दामोदर राव ख पीठ पर बांधी ख न घोड़ा पर सवार हुई ख दुश्मन न का बीच सी निकली गई। ये घटना उनकी अद्भुत वीरता न मातृत्व को प्रतीक छे। भाई बहनों, महिला न की सेना को गठन। रानी लक्ष्मीबाई न युद्ध का समय महिला न कभी सैन्य प्रशिक्षण दियो। उनकी सेना में कई वीरांगना न भी शामिल थी, जिनमें झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, काशीबाई प्रमुख थी। इन वीरांगना न झांसी की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई न तात्या टोपे न अन्य क्रांतिकारी न का साथ मिली ख अंग्रेज न का खिलाफ मोर्चो भी संभालियो। भाई बहनों, दोनों न मिली ख झांसी न ग्वालियर क्षेत्र में स्वतंत्रता की लड़ाई ख मजबूत कियो। भाई बहनों, युद्ध कौशल में नेतृत्व। रानी स्वयं युद्ध भूमि में सैनिक न को नेतृत्व करती, न उनकी रणनीति साहस न नेतृत्व क्षमता न उनका भारत की महानतम योद्धा नम स्थान दिलायो। साथ वो दुई तलवार चलाना न घुड़ सवारी में भी निपुण थी। भाई बहनों, झांसी से निकलने का बाद रानी न अन्य क्रांतिकारी का साथ मिली खन कब्जो करी लियो। न 18 जून सन 1858 का ग्वालियर का पास कोटा की सराय में अंग्रेज न का साथ अंतिम युद्ध लड़ता हुआ वह वीर गति का प्राप्त हुई। भाई बहनों, प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान न रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को वर्णन करते हुए कहो कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा हमका साहस, देशभक्ति, आत्मसम्मान न कठिन परिस्थिति में भी घर न मानन हार न मानने की प्रेरणा देज। भाई बहनों, रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि सभा न आयोजित करी जाए, न विद्यालय न भाषण निबंध न सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, न उनका साहस न बलिदान ख याद भी करो जाए। साथ महिला न युवा न का देशभक्ति न आत्मनिर्भरता को संदेश भी दियो जाए। तब भाई बहनों, रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर उनका हमारी ओर सी शत शत नमन। न भाई बहनों, अब एक महत्वपूर्ण संदेश, रोजगार मेला 2026। भाई बहनों, कल दिनांक 19 जून 2026 का शाम 5:10 सी विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम रोजगार मेला को सीधो प्रसारण हम आपका सुनावांगा। इना कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित रहेगा। न भाई बहनों, इना संदेश के बाद आओ थोड़ो मनोरंजन करांज न सुनांज योनी माड़ी लोकगीत।

0: अभी हमने सुने हो साधना उपाध्याय न साथी न को गायल योनी माड़ी लोकगीत।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पायो जाए। प्रश्न का एक बार फिर से सुनी लियो कि सोयाबीन में प्रोटीन और तेल कितना प्रतिशत पायो जाए। मैं बहनों इना प्रश्न का उत्तर आप सोची खाने रख जो, क्योंकि इना प्रश्न का उत्तर हम आपका देवांगा कार्यक्रम का अंत में। जब तक बनेल रहो हमारा साथ। भाई बहनों ने शासन किसान का हित में कई योजना न चलाई रही, जेकासी किसान भाई न की आय बढ़ न उनका मुनाफो हो। असी योजना में सी एक योजना छे एकीकृत बागवानी मिशन। ई भारत शासन की एक प्रमुख योजना छे न वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। एक उद्देश्य देश में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करनु न किसान न की आय बढ़ानु छे। ई योजना कृषि न किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही। इन्हीं योजना का उद्देश्य फल सब्जी फूल मसाला न औषधीय पौधा का उत्पादन ख बढ़ावो देनु, साथ ही किसान न की आय न रोजगार का अवसर भी बढ़ानु छे। गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री न आधुनिक तकनीक उपलब्ध करानु, सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप या स्प्रिंकलर का प्रोत्साहित करनु, साथ ही फसल का बाद होना वाला नुकसान का कम करना का लेना, भंडारण न कोल्ड चेन सुविधा को विकास करनु, भाई-बहनों जैविक खेती न संरक्षित खेती का बढ़ावा देनु। इन्हीं मिशन में कई बागवानी फसल न भी शामिल छे, जिनमें फल सब्जी मसाला फूल मशरूम औषधीय न सुगंधित पौधा, साथ ज नारियल काजू कोको न बांस शामिल छे। बात करें किसान न का मिलने वाला लाभ की, तो एमा नई बागवानी फसल लगाना पर अनुदान, नर्सरी स्थापित करना में सहायता, पॉली हाउस न शेड नेट हाउस पर सब्सिडी, कोल्ड स्टोरेज न प्रसंस्करण इकाई का लेना सहायता, प्रशिक्षण न तकनीकी मार्गदर्शन, फसल की गुणवत्ता न उत्पादकता में वृद्धि। भाई बहनों इन योजना को अरु भी उद्देश्य छे कि बागवानी फसल न का उत्पादन प्रसंस्करण भंडारण न विपणन का बढ़ावा देनु। बात करा इना मिशन का प्रमुख उप मिशन न की, तेमा राष्ट्रीय बागवानी मिशन पूर्वोत्तर ने हिमालयी राज्य बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान, नारियल विकास बोर्ड। भाई बहनों इन योजना का अंतर्गत मिलने वाली सहायता की अगर हम बात करा, तो किसान भाई बहन ख विभिन्न गतिविधि न पर शासन द्वारा अनुदान दियो जा रहे, जेम नया बाग न की स्थापना, उच्च गुणवत्ता वाली पौधा की नर्सरी न भाई बहनों अनुदान की राशि फसल परियोजना न राज्य शासन का नियम का अनुसार अलग अलग हुई सकज। बात करा आवश्यक दस्तावेज न की, तो एमा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज, पासपोर्ट आकार फोटो, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, आवेदन की प्रक्रिया कसा करा, तो सबसे पहला अपना जिला का उद्यानिकी विभाग से संपर्क करा, संबंधित योजना की पात्रता न अनुदान की जानकारी प्राप्त करा, एक बाद आवेदन पत्र भरी करना, आवश्यक दस्तावेज जमा करा, फिर विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाएगा, न स्वीकृति मिलने का बाद कार्य पूरा होना पर अनुदान राशि आपका बैंक खाता में भेजी दी जाएगा। भाई बहनों ने इन योजना से किसान न की आय में वृद्धि होए, कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन मिलज, फसल कटाई का बाद होने वाला नुकसान पर में कमी आवज, साथ ही रोजगार का नया अवसर मिलज, निर्यात का बढ़ावो न जल संरक्षण न आधुनिक तकनीक न को भी उपयोग हो। भाई बहनों अधिक जानकारी का लेन किसान भाई अपना नजदीकी उद्यानिकी कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र केवी की या राज्य शासन का पोर्टल से भी संपर्क करी सकज। तो भाई बहनों एकीकृत बागवानी मिशन बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास, आधुनिक तकनीक अपनाना न किसान का आर्थिक रूप से सशक्त बनाना की एक महत्वपूर्ण योजना छे। तो भाई बहनों ये तो थी आपकी न हमारी आपसी बातचीत, न आओ अब सुनाज ई वार्ता जेको विषय छे जलवायु परिवर्तन न कृषि। इना विषय पर जानकारी दी रहा डॉक्टर चंद्रहास पंडित।
1: किसान भाइयों राम राम। आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय पर। आज का हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन और कृषि। इस चर्चा में हम जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन से क्या तात्पर्य है और यह किस प्रकार से कृषि को प्रभावित कर

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: न भाई बहनों, अब आपसे पूछ लेवा आज को खेती किसानी संबंधित सामान्य ज्ञान को प्रश्न। तो आज को हमारा प्रश्न छे कि सोयाबीन में प्रोटीन अरु तेल कितना प्रतिशत

करती है। मैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा। साथ ही हम पूर्व निर्माण क्षेत्र के कृषकों पर होने वाले इसके प्रभाव को जानेंगे तथा कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और चुनौती सभी विषयों पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जलवायु संकट से निपटने के लिए चलाए जाने वाली प्रमुख योजनाएं, दिशा निर्देश एवं हमारे नागरिकों की सहभागिता इस संकट से निपटने के लिए कौन कौन सी हो सकती हैं, सभी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। जब हमारी पृथ्वी की जलवायु में दीर्घकालिक बदलाव होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यह तो एक सरल परिभाषा हुई। अब जानेंगे जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। जलवायु परिवर्तन का पहला मुख्य कारण प्राकृतिक कारण है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जैसे भूकंपन का आना या ज्वालामुखी का फटना इसमें प्रमुख हैं। जलवायु परिवर्तन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मानव जनित क्रियाएं, अर्थात मानव जाति द्वारा प्रकृति से अत्यधिक छेड़छाड़, जिससे इस पृथ्वी की जलवायु निरंतर प्रभावित हो रही है। इसके अंतर्गत औद्योगिकरण, वनों की निरंतर कटाई एवं जल और वायु प्रदूषण प्रमुख हैं। हमारे उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड हमारे वातावरण को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वातावरण में पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा रही है। ठीक इसी प्रकार वनों की अंधाधुंध कटाई बिना उचित वृक्षारोपण के इस पृथ्वी पर जलवायु संकट को लगातार बढ़ा रही है। हमें समझना होगा आज के युग में जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या है जिसकी वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि की जा चुकी है तथा यह अब कोई काल्पनिक विषय नहीं रह गया है। इसका समाधान भी संपूर्ण विश्व को मिलकर करना होगा, अन्यथा हमारा जीवन इस पृथ्वी पर संकट में पड़ जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में होगा। जलवायु परिवर्तन एवं उसके सामान्य रूप से पड़ने वाले प्रभावों को जानने के बाद हम चर्चा करेंगे कृषि से संबंधित जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। जलवायु परिवर्तन में हमारी खेती, मौसम, जल स्रोतों और फसलों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, बार बार आने वाला सूखा एवं बाढ़ जैसी चरम मौसम के प्रभाव अब अधिक स्पष्ट हो चुके हैं। किसान भाइयों, अब हम जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अपने प्रांत मध्य प्रदेश पर विस्तार से समझेंगे। हमारा मध्य प्रदेश, जो कि भारत का हृदय प्रदेश भी कहलाता है, यह एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी लगभग 60-70% आबादी कृषि पर निर्भर है तथा कृषि की गतिविधियां मानसून पर आधारित हैं। क्योंकि यहां पर किसाई के पर्याप्त साधन हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, इस दशा में मौसम की अनिश्चितता, अनावश्यक बारिश, लू, ओलावृष्टि, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं, जिससे फसलों की उत्पादकता में गिरावट और अधिक तापमान में वृद्धि के कारण हमारी गेहूं और चने की फसलों को प्रभावित कर रही है। साथ में कीटों का प्रकोप एवं पौधों के रोगों में वृद्धि, पशुपालन एवं जल संकट

तक की समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की सामान्य स्थिति को समझने के बाद हम आते हैं अपने पूर्व निर्माण पर, जो मुख्य रूप से खंडवा और बुरहानपुर जिलों में फैला हुआ है। हमारा यह क्षेत्र नर्मदा की गोद में बसा हुआ है और एक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की जलवायु अतीत में कृषि के लिए बहुत अच्छी मानी गई थी। यहाँ कपास, गेहूँ, मक्का, मूंगफली और अरहर जैसी फसलें बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी, लेकिन आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ जलवायु परिवर्तन एक विकराल समस्या बनकर हमारे समक्ष खड़ा है। जलवायु परिवर्तन पर पूर्व निर्माण की कृषि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इस बात को विशेष रूप से समझेंगे। इसका सबसे पहला प्रभाव है अनियमित मानसून। पहले हमारे इस क्षेत्र में मानसून की अवधि जून से सितंबर तक नियमित रूप से रहती थी, जिससे हमारी खरीफ की फसलों को पानी की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन अब बारिश की सीमा अनिश्चित हो गई है। कभी अत्यधिक बारिश जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और कभी कभी बहुत कम बारिश जिससे सूखा पड़ जाता है। इस अस्थिरता के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। दूसरा प्रमुख कारण है तापमान में वृद्धि। विगत कई वर्षों से देखा गया है कि हमारे क्षेत्र का तापमान निरंतर बढ़ रहा है और यह लगभग 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जो फसलों की उत्पादकता को सीधा प्रभावित करता है। कपास और सोयाबीन जैसी फसलें उच्च तापमान में अधिक जल की मांग करती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए एक संकट की स्थिति बनाती है। अन्य प्रभावों के रूप में यदि हम देखें तो फसलों में कीट एवं रोगों का बढ़ना, जल स्रोतों का सूखना और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट प्रमुख कारण हैं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से किसानों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। फसलें बर्बाद होने से ऋण की ग्रस्तता और अधिक बढ़ गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ऊपर उल्लेख की गई सभी समस्याओं को समझने के बाद अब प्रश्न उठता है कि हम इस स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। हमारे सामने कुछ प्रमुख उपाय और विकल्प मौजूद हैं जिन्हें अपनाकर हम इस संकट से निपट सकते हैं। प्रमुख उपाय के रूप में हमें इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। सर्वप्रथम है जल संरक्षण, बारिश के जल का संचयन, चेक डैम का निर्माण, कुओं का पुनर्भरण और ड्रिप सिंचाई को अपनाकर जल संकट को हम कम कर सकते हैं। अन्य कारणों में जलवायु अनुकूलन कृषि पद्धतियों को अपनाना भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमें कम जल की आवश्यकता वाली और अधिक तापमान सहने वाली फसलों को कृषि में बढ़ावा देना होगा, और इसके साथ साथ जैविक और मिश्रित फसलों की खेती को भी आगे बढ़ाना होगा। इसके पश्चात कृषि मौसम पूर्वानुमान में सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाओं का हम लाभ उठा सकते हैं। साथ ही स्थानीय प्रशिक्षण और जागरूकता, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हमारे किसान जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग और तैयार रह सकते हैं। इसके आगे मैं कहना चाहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो सामुदायिक सहभागिता की। इसके अंतर्गत गांव स्तर पर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं सामूहिक रूप से चलाई जा रही हैं, जिससे सामाजिक चेतना और सहयोग से इस संकट को निपटने के लिए हमें सहायता मिल सकती है। साथ ही हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं कृषि के क्षेत्र में लागू की।

0: हैं जिसमें प्रमुख हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, जैविक खेती को बढ़ावा और जल संरक्षण आदि। अंत में मेरे प्यारे किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या ही नहीं है, अपितु यह एक सामाजिक, आर्थिक और मानवीय समस्या भी है। यदि हमने अभी से उचित कदम नहीं उठाए तो हमारी कृषि व्यवस्था में भारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लें और सामूहिक रूप से इसका समाधान खोजें। सरकार, किसान, वैज्ञानिक, युवा और समाज सभी मिलकर अपने प्रयास करें, तभी एक हरित, समृद्ध और सतत विकास देश के लिए संभव हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।
1: भाई बहनों ने अभी हमने सुनी वार्ता, विषय तो जलवायु परिवर्तन न कृषि। इन विषय पर जानकारी दी रहा था डॉक्टर चंद्रहास पंडित। न भाई बहनों, आओ सुनाज ये महत्वपूर्ण संदेश।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
1: न भाई बहनों, अब समय छे आज का कृषि समाचार नको। तो आज का कृषि समाचार इना प्रकार सी छे। किसान नख जरूरत अनुसार मिलेगा डीजल। भाई बहनों, खरीफ सीजन की तैयारी न आता मानसून का देखी ख किसान नख पंप पर पर्याप्त डीजल नहीं मिलने से समस्या नको सामनो करनो पड़ी रहो। एक देखते हुए तेल कंपनी न जिला प्रशासन न कृषि उपयोग का लेना अब 10 का बजाय 50 लीटर तक डीजल देने की मौखिक स्वीकृति दे दीज। पर लिखित आदेश का अभाव में अभी भी कई पंप संचालक 10 लीटर से अधिक डीजल नहीं दे रहे। आज जिला भर का पेट्रोल पंप पर अब किसान नख 50 लीटर डीजल केन में मिली सकेगा। वर्तमान में खेती में हलाई जुताई सी लई खन बीज रोपण का लेना गांठ बेड बनाना का साथ आवश्यकता होना पर सीड ड्रिल को उपयोग ट्रैक्टर सी हुई रहो। न पर्याप्त डीजल नहीं मिलने से किसान नका कृषि कार्य में भी प्रभावित हुई रहा। ये तो था कृषि समाचार। न भाई बहनों, अब आपको बता देवा खंडवा कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज न का भाव की जानकारी। सोयाबीन न्यूनतम भाव रहा 4,500 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 6,826 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं न्यूनतम भाव रहा 2,000 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 2,492 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर न्यूनतम भाव रहा 5,500 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 6,950 रुपया प्रति क्विंटल। चना न्यूनतम भाव रहा 5,100 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 5,810 रुपया प्रति क्विंटल। ज्वार का न्यूनतम न अधिकतम भाव रहा 2,060 रुपया प्रति क्विंटल। एक साथ मूंग का न्यूनतम भाव रहा 5,000 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 7,200 रुपया प्रति क्विंटल। न मक्का का न्यूनतम भाव रहा 1,800 रुपया प्रति क्विंटल से अधिकतम 2,085 रुपया प्रति क्विंटल। उपज न की जानकारी का बाद अब आपका मौसम को हाल बताई देवा। आज सूर्योदय सुबह 5:42 पर हुयो न सूर्यास्त शाम 7:10 पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। न भाई बहनों, मौसम की जानकारी का बाद आओ थोड़ो मनोरंजन अरु करी लेवांज। न सुनी लेवांज एक अरुणिमाड़ी लोकगीत जेख गायोज देवेंद्र सिंह

0: સોલંકી ના સાથી નન
1: નહીં.

भाई बहनों ने अभी हमने सुनियो देवेंद्र सिंह सोलंकी न साथी न को गायल योनी माड़ी लोकगीत। भाई बहनों अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा गया प्रश्न को उत्तर देना को। तो हमने आपसे प्रश्न करे थो कि सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन न तेल पायो जाए। नहीं ना प्रश्न को उत्तर छे कि सोयाबीन में 42% प्रोटीन न 20% तेल पायो जाए। इना प्रश्न का उत्तर का साथ है आज को कार्यक्रम को समय हांच पूरो हुयो। तो आज्ञा देव आपकी बहन माधुरी सेन खर राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। और अब सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NSD आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण भोपाल से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं।

0: हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
1: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
0: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
1: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
0: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
1: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब

0: बजट से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है. जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर. साथ ही साथ गाइड्स, और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें. और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा.
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो. इस दिशा में वो काम कर रहा है, ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा. कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं. और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है. तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके.
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने. इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें. बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है. तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे. उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके. कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा.
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है. इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है. और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं. उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है. उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं. और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन

0: का एक मेजर आउटकम के तौर पे निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड इट मीन्स दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंक्स, एंड इंटीग्रेटिंग द रीजन इंटू ए रीजनल वैल्यू चेन विद द साउथ ईस्ट एशिया, एंड आई थिंक ऑल द स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स एक्चुअली टेक अस टू दैट पर्टिकुलर पैराडाइम, एंड इट्स ऑल्सो एसेंशियल दैट दिस अप्रोच रिकग्नाइजेज नॉर्थ ईस्ट एज बोथ अ नेशनल एसेट एज वेल एज अ गेटवे टू एक्सटर्नल मार्केट्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस बैलेंस दी स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज।
1: तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड वेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट।
4: नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट इज कंप्लीटिंग 12 इयर्स। ड्यूरिंग दोज 12 इयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकॉनमी। We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would put sort of contextualize what has happened, you've already given the environment, there were challenges like

0: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम।

0: to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
0: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा

0: डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।

0: रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाओ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। ला ला ला ला ला। सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में परिंदा फिल्म से ये गाना, खुर्शीद हलोरी के बोल राहुल देव बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। कुमार सानू की आवाज में जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा क्या है।

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे

प्रकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा, जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

वो खफा क्या हुए? जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा।

0: आह मानो कहा अब तुम हो जवा मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है। बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो

0: साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया।

इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।